सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। आज शुक्रवार है, सख संवत 1948 के आषाढ़ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 42 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। आप सबका दिन मंगलमय हो।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। विषय है महात्मा गांधी ने कहा था।
4: महात्मा गांधी ने कहा था, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है त्यों-त्यों उसमें अनेक फल आते हुए नजर आते हैं, उसका अंत नहीं होता। वस्त्र सत्य भाषण व सत्य पालन के अमित फल होते हैं। हमारा जीवन भी एक वृक्ष है। इस वृक्ष में यदि सच्चरित्रता रूपी फूल न लगा हो तो निश्चय जानिए इसमें महानता रूपी फल कदापि न लगेगा। इस एक फूल की सुगंध से संपूर्ण

0: जीवन सुरभित हो उठता है और आत्मा दिव्य प्रकाश से चमक उठती है। कबीरदास ने ठीक ही कहा था, सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। गांधी जी की सत्यनिष्ठा इस बात से साफ जाहिर है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, तथा भारत को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए जो आंदोलन शुरू किया उसे सत्याग्रह का नाम दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन से एक बार किसी ने पूछा, महानता का सर्वप्रधान लक्षण क्या है? उन्होंने झट कहा, सच्चरित्रता। इतिहास लिंकन के इस उत्तर की पुष्टि करता है। ऐसी सच्चरित्रता जिसे पाकर इंसान भगवान बन जाता है में कई गुणों का समावेश रहता है। सत्यवादिता सच्चरित्रता का पहला लक्षण है। सच्चरित्र व्यक्ति अपने जीवन में कहीं भी असत्य को स्थान नहीं देते, इसी कारण वे निडर और अजेय होते हैं। भले ही वह शरीर से क्षीण हो या अन्य भौतिक शक्तियां उसके पास न हो, पर आत्मविश्वास का कवच धारण कर और स्वाभिमान की ढाल लेकर जब वह आगे बढ़ता है तो पहाड़ उसके रास्ते से अलग हट जाते हैं, समुद्र भी उसके पथ का बाधक नहीं बनता, आसमान उस पर फूलों की वर्षा करता है, विपत्तियां उसे देखकर सहम जाती हैं, विजयश्री उसके गले में वरमाला डालती है। गांधी जी देखने में एक साधारण व्यक्ति थे, शारीरिक बल अत्यंत साधारण और पढ़ने लिखने में भी साधारण। हाँ, सत्य के प्रति विशेष अनुराग था तथा इसी शक्ति के आधार पर उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। बालक गांधी ने जिस धरती पर जन्म लिया था वह गुलामी के बंधनों में जकड़ी हुई थी, पर उस बालक ने बड़े होकर अपनी सच्चरित्रता व चरित्र बल के सहारे उस शक्तिशाली ब्रिटिश हुकूमत, जिसके शासन में कहते हैं कभी सूर्यास्त न होता था, को भी अपने सत्याग्रह के सामने झुका दिया। सत्य में कितना बल है इसका इससे सुंदर प्रमाण और क्या हो सकता है? जब सच्चरित्रता की आभा से व्यक्ति का व्यक्तित्व दीप्त हो उठता है तो वह स्वार्थ के धरातल से ऊपर उठकर स्वयं को लोक के साथ एकाकार कर देता है। तब लोक का सुख दुख उसका सुख दुख बन जाता है, लोक कल्याण के लिए ही वह जीता है। गांधी जी ने अपना समस्त जीवन राष्ट्र व लोक कल्याण में लगा दिया था, तथा एक कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें उनकी इस सेवा से प्रभावित होकर राष्ट्रपिता की संज्ञा से विभूषित किया। निसंदेह वे राष्ट्रपिता थे। एक पिता जिस तरह अपनी संतान के लिए अपना सर्वस्व नौछावर कर देता है, उसी तरह गांधी जी ने भी राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना जीवन होम कर दिया। सत्य ही उनके लिए परमेश्वर था और एक सच्चरित्र जीवन वहां तक पहुंचने का साधन। अपनी कर्तव्य निष्ठा व सत्य निष्ठा के कारण जो साधारण मानव से महादेव बने थे वे ही थे मोहनदास करमचंद गांधी। महाकवि दिनकर ने उनकी महानता को इन शब्दों में प्रणाम किया, तू कालो दधि का महास्तंभ, आत्मा के नभ का तुंग केतु, बापू तू मर्त अमर्त स्वर्ग, भूनभ का महासेतु।
1: तो भी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, विषय था महात्मा गांधी ने कहा था।

और समय हो चला है, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:10 हो रहे हैं। तो आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और शुरुआत करते हैं हरिहरन की आवाज में गाया इस भजन से।

0: और अनु जलोटा के स्वर में गाए इसी भजन के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पे समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड नंबर 12।

भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण कांठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

तो अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। और आइए बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण में। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। काव्यधारा आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। 7:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र।

से प्रादेशिक समाचार का समय होगा सुबह 8:30 का। 8:45 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग मेलोडी। सुबह 9:00 से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। सुबह 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

सुबह 11 बजे से आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे राज्य केंद्र से। 1:20 पर आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे राज्य केंद्र से। संध्या 3 बजे से आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। संध्या 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। और 4:02 पर आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 4:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

संध्या 5:02 पर आप पुनः सुनेंगे, संध्या 5:02 पर आप सुनेंगे इवनिंग मेलोडी। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। संध्या 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे राज्य केंद्र से, और 6:02 पर आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। संध्या 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे राज्य केंद्र से। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झनकार, हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे सांस से सुनेंगे आप संध्या 7:30 पर। ऑल टाइम हिट्स आप सुनेंगे 7:45 पर। फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8:00। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, रात्रि 9:00 आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9 हमारे दिल्ली केंद्र से। रात 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से, और 10:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा, और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से। रात्रि 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में, और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: और आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं शारदा सिन्हा की आवाज में गाए प्रोग्राम का अगला गीत।

0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम काव्यधारा में कविताएं सीखा जैन की जुबानी।
1: मेरी कविता का शीर्षक है मुझे कविता लिखना नहीं आता। मुझे कविता लिखना नहीं आता, ये तो तुम हो जो कागज पर उतरते हो तो कविता बन जाती है। तुम्हारी बातों की मिस्री है जो मेरे शब्दों को मीठा कर जाती है। तुम्हारे ख्यालों की खुशबू है जो मेरे ख्यालों को महका जाती है। तुम्हारे पास होने की कशिश है जो मेरे होठों पर मुस्कुराहट ले आती है। हाँ, मुझे कविता लिखना नहीं आता। दूसरी कविता का शीर्षक है मर्ज़े इश्क। सुना है वह बड़ा नामवर है हकीम, मगर मर्ज़े इश्क की दवाई न दे। नहीं कोई मरता बिछड़ कर, मगर खुदा किसी को किसी से जुदाई न दे। उसकी आँखों से कुछ भी छिपता नहीं, एक मेरा दर्द उसको दिखाई न दे। दर्द लिखती हूँ गजल न समझो इसे, दर्द पर मेरे कोई बधाई न दे। अगली कविता का शीर्षक है मैं एक स्त्री हूँ, अपने पिता से भी रिश्तों का हिसाब देना पड़ता है। मैं एक स्त्री हूँ, मुझे हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। क्या पहनूं, कहाँ जाऊं, किससे कैसे बात करूं, हर बात का सलीका मुझे सिखाया जाता है। कुछ इस तरह मेरी जात का मजाक उड़ाया जाता है। वक्त खराब है ये कहकर पर्दों में मुझे बैठाया जाता है। वक्त खराब पुरुषों ने किया और मर्यादा का पाठ मुझे पढ़ाया जाता है। मेरे ख्वाबों और ख्वाहिशों की कुर्बानी चाहती है मुझसे ये दुनिया। ना दूं अगर तो खुदगर्ज भी मुझे ठहराया जाता है। साल महीने दिन नहीं, हर पल का हिसाब देना पड़ता है। मैं एक स्त्री हूँ, मुझे हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। अगली कविता का शीर्षक है गुम हो जाऊंगी। कमरे की बिखरी चीजों में ही गुम हो जाऊंगी, तुम लाख पुकारोगे फिर भी लौट ना पाऊंगी। आईने पर चिपकी बिंदियां, ड्रेसिंग पर बिखरी चूड़ियां, दरवाजे पर टंगी चुन्नियां, अलमारी में भरी साड़ियां, वो मेरा हेयर ब्रश और बेतरतीब पड़े क्लिप्स, मेरी अंगूठियां, मेरी घड़ियां, मेरा काजल, मेरी पायल और सिंदूर की छोटी डिबिया, टेबल पर बिखरी किताबें और डायरी के बिखरे पन्ने, सब तुमको सताएंगे, रह रहकर मेरी याद दिलाएंगे। कभी कभी मेरी पागलों सी हंसी की आवाज भी आएगी और तुम्हारी नजरें मुझे खोजने लग जाएंगी। तुम जो अभी लापरवाह कहते हो मुझे, फिर इन्हीं बिखरी चीजों में ढूंढोगे मुझे। अगली कविता का शीर्षक है तुम आओ तो अपने साथ ले आना वो सारे गुजरे लम्हे जो गुजर कर भी ना गुजरे। तुम आओ तो अपने साथ ले आना वो दिन भर होती बरसातें, वो सर्दियों की रातें, गर्मियों की शामें, पतझड़ और बसंत, वो सारे मौसम जिनमें तुम नहीं थे मेरे संग। ले आना अपने साथ टूटे सपने, अधूरी चाहतें, अनकहे वादे, जागती रातें, वो सारे बेचैनियों भरे पल और वो उलझन जिसका नहीं निकला कभी कोई हल। तुम आओ तो ले आना तुम्हारा बचपना, शरारतें और मेरा पागलपन, लेकिन आने से पहले टटोल लेना अपना मन। आना तो पहले वाले तुम बनकर, जिसकी आंखों में मेरे लिए होता था प्यार और अपनापन। तुम आओ तो ले आना मेरे उस तुमको। अगली कविता है तेरा ख्याल। कुछ तो है हम दोनों के दरमियाँ जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होता। कुछ लोग पागल भी समझते हैं मुझे, पर ये मर्ज भी सबको नहीं होता। मुस्कुरा देती हूँ तेरे हर सितम पर और तू समझता है मुझे दर्द नहीं होता। खाक कर दिया है खुद ख्वाहिशों को अपनी, अब किसी बात का रंज नहीं होता। रस्म उल्फत से बड़ी कोई रस्म नहीं होती, ये वो कर्ज है जो उम्र भर अदा नहीं होता। पटक लेती हूँ सिर अपना घर की दीवारों पर, क्यों तेरा ख्याल मुझसे जुदा नहीं होता। अगली कविता है एकांत। तुम्हारे प्रेम में मैंने तुम्हारा सानिध्य भी नहीं चाहा, सुना अनकहा भी, महसूसा बिन छुए भी, बिन आवाज कई बार तुम्हें पुकारा भी, पर कभी तुम्हें खुद से

बांधना भी नहीं चाहा। प्रेम में मैंने कभी नहीं दिया तुम्हें कोई अनौपचारिक सा संबोधन। बातों का सिलसिला भी रहा बेहद औपचारिक। देश, दुनिया, धर्म, शिक्षा आदि चर्चाओं के मध्य बिना संकेत ही उपजाया प्रेम, जैसे खेतों में अनचाहे उगाती है खरपतवार। प्रेम में निकटता किसे भली नहीं लगती, पर मैंने चुना एकांत तुम्हारे लिए, तुमसे अधिक स्वयं के लिए, क्योंकि अनचाहे उगी खरपतवार फसलों को नष्ट कर देती है। अगली कविता है दुआ। मेरी गली में वो आए कभी, बनके खुशबू मुझे महकाए कभी, रोशन कर दे इस तरह से जहां मेरा, बनके चांद फलक पर जगमगाए कभी। ख्वाहिश है इतनी सी मेरे दिल की, सूरज बन मुझको जगाए कभी, तर कर दे मेरी रूह को अपनी चाहत से, बारिश की पहली बूंद बन जाए कभी। उसकी सूरत दिखे देखूं मैं जिधर, बनके काजल आंखों में समाए कभी। नींदे उड़ाई हैं जिसने मेरी, खुदा उसकी भी नींदे उड़ाए कभी। अश्क बनकर पलकों पे उतर आता है जो, खुशी बनकर लबों पर मुस्कुराए कभी। जिसके आने की अब कोई सूरत नहीं, बाहर बनके जिंदगी में लौट आए कभी। इश्क उल्फत मोहब्बत फना होंगे सभी, है दुआ वो इबादत मेरी बन जाए कभी। अगली कविता का शीर्षक है बंटवारा। उसके हिस्से नींदे आई, मेरे हिस्से मेरा जगा। उसने चुन ली खामोशी, मैंने चुन लिया कह कहा। उसने सारे दर्द समेटे, मैंने मीठी यादें रख ली। वो रोया तन्हाई में और मैंने गीली पलके चख ली। कस्मे वादे पीछे छूटे, प्रेम प्यार के बंधन टूटे। वो आगे बढ़ गया राह में, मैं उससे कुछ पीछे छूटी। दिन बीते और रातें बीती, उसके बिन बरसाते बीती। सब कुछ बांटा था आपस में, सब कुछ बट गया इस तरह। उसके हिस्से नींदे आई, मेरे हिस्से में रच जगा। अगली कविता है महिला दिवस। त्वचा का रंग गोरा होना चाहिए और बाल लंबे काले, कमर पतली होनी चाहिए और विशेष अंग उभरे सुडौल, लंबी हो पर पति से ज्यादा नहीं, खाना अच्छा बनाती हो, सलीके से घर सजाती हो, जब सजे सवरे तो हीरोइन को भी पीछे छोड़े, मुंह में जबान तो हो पर जरूरत जितना ही बोले, उच्च शिक्षित हो पर नौकरी ना करे, अंग्रेजी जानती हो पर हिंदी में बात करे, हर जगह आत्मनिर्भरता का स्वांग ना भरे, अपने घर में अपनों से ही डरे, नौकरी करे तो वेतन पर अधिकार ना जताए, अधिक योग्य होकर भी कार्यालय में समान वेतन के लिए आवाज ना उठाए, घर परिवार बाजार हर जगह शोषण का शिकार हो पर फिर भी आजादी का ढोल बजाए। चलो बहनों, ऐसे ही महिला दिवस मनाएं। अगली कविता है बसंत आ रहा है। मन का कोई हिस्सा रोज रोज जर्द पड़कर झड़ता जा रहा है और चहुंओर ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, बसंत आ रहा है, बसंत आ रहा है। गांव शहर सब तब्दील हो गए कंक्रीट के जंगल में और धरती का सौंदर्य बस बगीचों बालकनियों तक सिमटता जा रहा है। चहुंओर ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, बसंत आ रहा है, बसंत आ रहा है। कोयले अब पहले सी बावरी नहीं होती, गौरैयों का परिवार खोता जा रहा है। सारी दुनिया सिमट गई है गूगल पर, यह संसार कितना छोटा होता जा रहा है। चहुंओर ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, बसंत आ रहा है, बसंत आ रहा है। अब सरस्वती की वंदना कोई नहीं गाता, वीणा की मधुर तान भी कोई न बजाता। नशे में झूमते हैं बालक पूजा पंडालों में, अश्लील गीतों का भंडार बढ़ता जा रहा है। चहुंओर ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, वसंत आ रहा है, वसंत आ रहा है। मनुष्यता अब किसी को भली नहीं लगती और प्रेम करना अपराध
होता।

0: जा रहा है, चहुर ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, वसंत आ रहा है, वसंत आ रहा है। धन्यवाद।
1: तो अभी आप सुन रहे थे शिखा जैन की कविताएं उन्हीं की जुबानी कार्यक्रम काव्यधारा में। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

तो आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत, और अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में गाए इस गीत को। और आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं

0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत संगीत एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हमारे अगले प्रसारण के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी

विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थीं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10%

0: परिषद। अधिक हैं समाचार कक्ष से, मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
3: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा, नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
4: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी काराकास में भूकंप में लगभग 3,000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के

0: न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड क्वीन मैक्सिमा ऑफ नेदरलैंड्स डिस्कस इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेड रिवोल्यूशन। गवर्नमेंट रिस्टोर्स commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement

0: savior as the resilient Ecuador pulled off a stunning 2-1 come-from-behind victory against Germany. Earlier, Ivory Coast also secured their place in the knockout stage for the first time with a comfortable 2-0 victory over Curaçao in Philadelphia today. Nicolas Pepe scored a dynamic double for Ivory Coast to end Curaçao's campaign on a disappointing note. Later, both Japan and Sweden stormed into the knockouts round as they played a 1-1 draw in the Group F clash at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champions Brazil in the round of 32. Meanwhile, Netherlands outclassed Tunisia 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a round of 32 clash with Morocco. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Bangladesh by 5 wickets in a Group A clash in Manchester, England last night. Opting to bat first, Bangladesh posted 136-8 in the stipulated 20 overs. With this win, India have 6 points in Group A from 3 wins and 1 loss. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Anuja. Government lifts Iran war-linked curbs on commercial LPG, writes Hindustan Times. A headline in the Indian Express writes, from Sunday, India will resume tourist visas for Bangladesh nationals. Netra, India's airborne surveillance platform, gets final operational nod, states the Hindu. Sportspersons will now be allowed to carry javelins and bulky sports equipment on trains, even if they exceed the prescribed dimensions, according to the Railway Ministry, except pole vaults, informs the Pioneer. Another headline in the Pioneer writes, government expands QR code tracking to key drug categories to curb counterfeits. And finally, millions breathe easy. As the Times of India reports, CBSE students already in standards 7th to 9th with foreign language can keep their current combination till 10th. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है. आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी. पहले मुख्य समाचार. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, 30 जून से शुरू होगा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान. 7 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची. राज्यव्यापी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का समापन. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, नशा मुक्त और स्वस्थ झारखंड सरकार का लक्ष्य. हाईकोर्ट ने रांची स्थित रिम्स की जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने का राज्य सरकार को दिया निर्देश. आज मनाया जा रहा है मुहर्रम. रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत राज्य भर में ताजिया जुलूस, मजलिस और करबला में होगा धार्मिक आयोजन. और मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा जिले के कुछ हिस्सों में लू की आशंका, शेष 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी. और अब समाचार विस्तार से. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण की कार्ययोजना और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर गणना और इन्यूमिरेशन फॉर्म का वितरण करेंगे. सभी दावों और आपत्तियों के निष्पादन के बाद 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.
4: 30 जून से 29 जुलाई तक कार्यक्रम के संबंध में चर्चा हुई, साथ में उनका भी सहयोग आकर्षित की गई थी ताकि वो इनोवेशन फेज के समय में साथ साथ में काम करने के समय कंकरेंट ऑडिट के माध्यम से पार्टिसिपेटिव मोड में पूरा तरफ से आपका बीएलए 2 के सहयोग में अच्छा से एक मतदाता सूची

0: त्रिपिटक निर्माण करने का सहयोग आगरा किया गया था, वो भी आश्वासन दिया था।
1: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के दौरान फर्जी प्रमाण पत्रों के उपयोग को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने पाकुड़ जिले में फर्जी वेबसाइट के माध्यम से जन्म, जाति एवं अन्य दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह के खुलासे से संबंधित समाचार का संज्ञान लेते हुए ऐसे मामलों में त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। रांची के शौर्य सभागार में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध चलाए गए 15 दिवसीय राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का समापन हुआ। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार नशा मुक्त और स्वस्थ झारखंड के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता, खेलकूद, काउंसलिंग और सहभागिता को आवश्यक बताया तथा उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। एडमिशन और टेंडर घोटाले में सीआईडी की टीम द्वारा पूछताछ के बाद रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया है। राज्य सरकार ने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और रिम्स के सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. दीपेंद्र कुमार सिन्हा को अगले आदेश तक कार्यकारी निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। डॉ. राजकुमार ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और काम करने के लिए पर्याप्त माहौल नहीं मिलने का उल्लेख किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान की जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। अदालत ने रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है। वहीं बोकारो की लापता 18 वर्षीय युवती के मामले में हाईकोर्ट ने कोलकाता स्थित CFSL से प्राप्त DNA जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया और राज्य सरकार को मामले की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उद्घाटन करते हुए न्यायुक्त अनिल कुमार मिश्रा ने लोगों से साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की। वहीं सीआईडी की DSP नेहा बाला सिंह ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी वेबसाइट और ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपायों की जानकारी दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alert और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज देश भर में मनाया जा रहा है मुहर्रम। इस मौके पर मजलिस, ताजिया जुलूस और दुआओं का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन की ओर से जुलूस मार्गों पर सुरक्षा, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इससे पूर्व कल मुहर्रम के दौरान शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची पुलिस ने मेन रोड पर फ्लैग मार्च और व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। रांची में भारतीय जनता पार्टी महानगर जिला की ओर से संविधान हत्या दिवस के अवसर पर संगोष्ठी और लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय था और नई पीढ़ी को इससे परिचित कराना आवश्यक है। कार्यक्रम में मीसा कानून के तहत जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया।
2: देशवासी संविधान के हत्या दिवस के रूप में इसलिए मानते हैं क्योंकि देश में आपातकाल के नाम से जो जुल्म ढाया गया था, संविधान को तार तार किया गया था और देशवासी ने आत्मसात किया था, उसकी हत्या होते हुए लोगों ने देखा।
1: धनबाद पुलिस ने फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से प्रिंस खान गिरोह के संपर्क में था और गिरोह के निर्देश पर काम कर रहा था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि रंगदारी के विवाद में एक

0: रेलवे ठेकेदार पर फायरिंग की साजिश रची जा रही थी।
1: टीम के द्वारा सूचना के अनुसार प्रॉपर तरीके से रेड किया गया है। उस रेड में हमको दो पिस्टल और 33 लाइव राउंड गोली बरामद हुआ है, तो साथ में इनका जो यूज हुआ मोबाइल भी मिला है। ये चार आइटम सीज करते हुए इनको विधिवत वहां पर अरेस्ट किए गए हैं।
0: मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा जिले के कुछ हिस्सों में लू चलने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अलनीनो के प्रभाव के कारण अगले कुछ दिनों में बारिश कम देखने को मिलेगी।
2: आने वाले दिनों में एक दो दिनों में हीट वेव जैसी भी स्थिति रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी है, थोड़ा सा उमस है, फील लाइक टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा फील होगा। यही है कि 26 सेकेंड हाफ से थोड़ा सा स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलेगा, और उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि लास्ट जो जून का 2-3 दिन बचता है 28-29 तारीख से, और पहला हफ्ता जुलाई में वहाँ उम्मीद की जा रही है कि मानसून थोड़ा सा रिवाइव कुछ करेगा।
0: झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक बबलू कुमार को भारतीय कुश्ती संघ ने भारतीय अंडर 15 ग्रीको रोमन कुश्ती टीम का प्रशिक्षक नियुक्त किया है। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम 27 से 29 जून तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। बबलू कुमार की नियुक्ति से झारखंड के खेल जगत में उत्साह का माहौल है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने वेनेजुएला में आए भूकंप से तबाही के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पारण परेड में शामिल होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पुलिसकर्मी के लिए बनेंगे अस्पताल व आवासीय विद्यालय। प्रभात खबर ने लिखा है, छापे के बाद रिम्स निदेशक का इस्तीफा, कहा अपराधी की तरह की गई पूछताछ। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में ठनके से 10 की मौत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मुहर्रम जुलूस से लौट रही ताश पार्टी पर चढ़ा ट्रक, 7 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, 30 जून से शुरू होगा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 7 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची। राज्यव्यापी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का समापन। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, नशा मुक्त और स्वास्थ्य झारखंड सरकार का लक्ष्य। हाईकोर्ट ने रांची स्थित रिम्स की जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने का राज्य सरकार को दिया निर्देश। आज मनाया जा रहा है मुहर्रम, रांची जमशेदपुर धनबाद समेत राज्य भर में ताजिया जुलूस, मजलिस और करबला में होगा धार्मिक आयोजन। और मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा जिले के कुछ हिस्सों में जताई लू की आशंका, शेष 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड,

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी, बस कुछ ही पल में।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: तीन महीने में पैसे डबल,
3: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी,
2: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
4: और कल होगा भी नहीं।
2: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
3: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
2: और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
4: और फास्ट रिटर्न से बच के
2: और फास्ट बॉलिंग से भी।
5: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यहीं पे समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज रहे हैं। आइए चलते अपने मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: सिंघम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत था।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: अकेली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गुरुशब्द सिंह और चयनिका गर्ग की आवाजों में। बोल गुरुशब्द सिंह के थे, संगीत भी इन्हीं का था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: थप्पड़ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। राघव चैतन्य की आवाज में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने करते
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। ये एक ऐसी बेड़ी है जो व्यक्ति की उड़ान और उसके सपनों को छीन लेती है। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग मस्ती या टेंशन दूर करने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन ये कब एक जानलेवा लत बन जाता है पता ही नहीं चलता। आज का दिन उन लाखों परिवारों के नाम है जिन्होंने अपने को इस लत के कारण खोया है, लेकिन आज का दिन सिर्फ गम मनाने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का भी है, खुद को बचाने का और अपने परिवार को सचेत रखने का संकल्प। जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं

उनका हाथ थामकर उन्हें सही रास्ते पर लाने का दिन भी है। दोस्तों, नशीली दवाओं की अवैध तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको अपने आसपास कुछ भी संदिग्ध लगे या अगर आपको लगता है कि कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा है तो खामोश न रहें, मदद के लिए आगे आएं। नशा नाश की जड़ है और हमें मिलकर इस जड़ को काटना है। तो चलिए, आज के इस दिन हम वादा करते हैं कि हम न सिर्फ नशा मुक्त भारत का सपना देखेंगे बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपनी छोटी छोटी कोशिश भी करेंगे। जिंदगी बहुत हसीन है दोस्तों, इसे किसी नशे की भेंट न चढ़ाएं, अपने हुनर को पहचानें, अपने सपनों को जिएं और नशे को कहें ना। आज 26 जून है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को स्थापित किया गया था, आज के दिन नशा मुक्ति के लिए। और इसका उद्देश्य है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिए शिल्पा राव की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, अमित त्रिवेदी का संगीत है।

0: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना था, शिल्पा राव की आवाज, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। यह है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

एनिमल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। गरिमा के बोल थे श्रेयस पुराणिक का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।

वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैयाराजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिनथई किलंथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलैयाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलैयाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की टुकटुकी है, क्या जोर से बजी है,

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैयाराजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैयाराजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने

एलिया राजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब एलिया राजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर एलिया राजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

राजविन, रामन्ना मलाई, इलिया राजविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलिया राजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलिया राजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलिया राजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलिया राजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलिया राजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाक, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सार

इलैयाराजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलैयाराजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलैयाराजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलैयाराजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है, और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलैयाराजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहां तक कि अपने भाई को भी, इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलैयाराजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है, और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलैयाराजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलैयाराजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहां इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है, और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिंफनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल है।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बना।

संगीतकार इलैयाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कामले।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ
2: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, बस कुछ ही पल में।

0: तो दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7 6

0: प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।
1: आदाब, नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आपकी दोस्त वंदना अर्चना का प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, हर दिन अपना हमें सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, क्योंकि लौट कर आने वाला आज दोबारा नहीं आता और कल किसी ने देखा नहीं। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है, जो समय समय पर सबकी परीक्षाएं लेती रहती हैं।

0: तो कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर कैसे कर रहा है नशा युवाओं को बर्बाद। दोस्तों, नशा जो है वह दीमक की तरह होता है जो अंदर से खोखला कर देता है, या न केवल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है बल्कि युवाओं के करियर, रिश्ते और भविष्य को भी पूरी तरह बर्बाद कर देता है। साथ ही आर्थिक रूप से भी खोखला कर देता है। यह उनके निर्णय लेने की क्षमता को भी खत्म कर देता है, साथ ही अपराध और आत्महत्या जैसे खतरनाक रास्ते पर ले जाता है, जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य और उनका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। क्योंकि नशा वह दीमक है जो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को खोखला कर देता है। दोस्तों, शुरुआत में लोग शौक या तनाव में नशा करते हैं, पर बाद में यह जानलेवा लत बन जाता है। इससे लीवर, फेफड़े और किडनी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। नशा मानसिक और दिमाग कमजोर कर देता है, सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, क्योंकि यह सीधा दिमाग पर असर डालता है। इसकी वजह से एकाग्रता खत्म हो जाती है, याददाश्त कमजोर होती है, साथ ही युवा पीढ़ी डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। नशे की लत के कारण युवाओं का पढ़ाई से ध्यान पूरी तरह हट जाता है, जिससे वे अपने करियर में पिछड़ जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और जीवन में असफल हो जाते हैं। और इसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। नशे की भारी लत के लिए पूरा करने के लिए युवा अक्सर गलत रास्तों का चुनाव कर लेते हैं, जिसकी वजह से चोरी, लूटपाट और हिंसा जैसे रास्तों का चुनाव कर लेते हैं। और इसकी वजह से पारिवारिक तनाव बढ़ता है, घर की सुख शांति छिन जाती है, साथ ही साथ माता पिता, भाई बहन, घर के परिवार के सभी सदस्य मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है और रिश्तों में भी खटास आ जाती है। तो इसलिए दोस्तों, नशे की लत से दूर रहें, क्योंकि यह सिर्फ हमारे भविष्य को ही, आज के साथ साथ हमारे भविष्य को भी बर्बाद कर देती है। तो आइए आज इसी कार्यक्रम में एक हम भेंट वार्ता सुनते हैं। विशेष भेंट वार्ता, नशेपान से होने वाली गंभीर समस्याएं और समाधान। भेंट वार्ताकार है नशा मुक्ति केंद्र के संचालक मोहम्मद जमील अख्तर और नशे की लत से उबर चुके व्यक्ति। दो व्यक्तियों की बातचीत सुनेंगे, पुरुषोत्तम कुमार और रिहान रजा। उनसे बातें कर रहे हैं मोहम्मद अली सबीर अंसारी और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं विक्रम कुमार रंजन। तो आइए सुनते हैं।
1: श्रोताओ, मौजूदा समय में नशा पान का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। ये समझिए कि हर पांच में से एक व्यस्त इसकी चपेट में है। इसका बढ़ता प्रचलन आधुनिक समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए एक गंभीर और चिंताजनक समस्या बन गया है। जो इससे ग्रसित हैं, उनके शरीर को ये अंदर से खोखला कर देता है। इसके रसायन इतने हानिकारक होते हैं कि ग्रसित व्यक्ति के शरीर में कई गंभीर बीमारियां पैदा कर देते हैं, जिससे प्रभावित व्यक्ति की अंततः मौत तक हो जाती है। व्यक्ति को पास पड़ोस, यहाँ तक कि समाज से भी निष्कासित होना पड़ता है और फिर वो तनावपूर्ण जीवन जीने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या है नशा पान के कारण, इससे होने वाली गंभीर समस्याएं और इसका समाधान, नशा मुक्ति के लिए सरकार द्वारा क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इसी से संबंधित बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है क्लिनॉक्स एंटी ड्रग के सेक्रेटरी मोहम्मद जमील अख्तर को। तो जमील अख्तर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, नशा पान का कारण क्या है, खासकर युवा पीढ़ी, हमारी नई नस्लें इसके एडिक्ट कैसे हो रहे हैं?
2: सर, असल होता है का सर, नशा नेगेटिव थिंकिंग चीज है
1: जी,
2: उसको खिंचाव नशा का बहुत ज्यादा होता है
1: जी।
2: आज लोग क्या होता है सर, शिक्षा से पीछे है
1: जी,
2: जिसके कारण इन नशा के तो तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं सर
1: जी, जी।
2: और उसका थोड़ा सा मजा लेने के लिए
1: जी
2: आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं।
1: पहली वजह आ रही है कि अशिक्षा, क्योंकि उसके बारे में जागरूकता भी नहीं, अवेयरनेस भी नहीं है। कुछ ऐसे माहौल में, ऐसे संगत में गलती से अगर पड़ गए तो लोगों का खिंचाव उसकी तरफ हो जाता है, जिसका है कि अशिक्षा है। अगर शिक्षित होते, पढ़े लिखे होते तो खुद इस बात को काट सकते, लेकिन न जानने की वजह से वैसे माहौल में पड़ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे उनको ये लत लग जाती है। नतीजा होता है कि उसका बड़ा प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है उसके जीवन पर। और अगर गलती से जो इस पर जैसे कि आदि हो गए, एडिक्ट हो गए, तो उसके शरीर में ये किस तरह का प्रभाव डालता है?
2: सबसे ज्यादा आपको किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा
1: जी,
2: लंग्स खराब होगा आपका
1: जी।

0: और लीवर से अफेक्टेड तरह तरह का बीमारी होगा.
1: जी जी, मतलब शरीर के अंदर जो मेन ऑर्गेन है, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये अफेक्टेड हो जाता है और उसकी पाचन क्रिया भी गड़बड़ हो जाती है, भूख में उसको कम लगती है,
0: बहुत कम लगी और हाथ सिकुड़ता है.
1: जी जी,
0: जैसे आप जो क्लॉट पी रहे हैं
1: जी,
0: उससे हाथ आपका सिकुड़ रहा है,
1: हाथ सिकुड़ रहा है,
0: हाथ सिकुड़ने के कारण आपको भूख नहीं लगेगी.
1: जी, और जब भूख नहीं लगेगी तो जाहिर बात है कि फिर आपका स्वास्थ्य जो है कमजोर हो जाएगा और धीरे धीरे आप उसको और भी गिरफ्त में आते चले जाएंगे. ये तो उसका क्या असर होता है शरीर के किन अंगों पर ये प्रभाव पड़ता है ये आपने बताया, और जो पूरे तौर से इस पर ग्रसित हो गए तो अंत में उसका क्या परिणाम होता है?
0: अंत में तो मौत.
1: दूसरी बात ये जानना चाहेंगे, जो नशे के आदि होते हैं समाज पर उसका क्या असर होता है?
0: समाज में नशे के आदि लोग इसका आपूर्ति करने के लिए चोरी करना
1: जी,
0: किसी का सामान छीनना
1: जी,
0: और किसी को मार देना. आए दिन आप देखिए कि हजारीबाग में इतना मर्डर हो रहा है.
1: जी जी,
0: तो उसमें 90% केस नशा का ही है.
1: जी जी जी,
0: 90% केस नशा का ही, नशा के चलते आज इसको गोली मारा जा रहा है, किसी से पैसा छीनताई में उसके साथ घटना का अप्रिय घटना हो जा रहा है सर
1: जी.
0: तो सिर्फ नशा का ही कारण है
1: ये. मतलब हो गया कि जो लोग नशे के आदि हो गए हैं उसको तो ड्रग लेने के लिए उसके लिए पैसा की जरूरत होती है, और पैसा अगर ये नहीं कमा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि जब इसके शरीर में अंदर या ब्रेन में उसका जब खिंचाव होगा, तनाव होगा, तो दवा चाहेगा, और दवा के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो मार्केट में या शहर में या समाज में जो छिनतई हो रहा है, चोरी हो रही है, उसका बड़ा कारण यही है
0: सबसे बड़ा.
1: और ये यूथ जो है, जो हमारी जो युवा नस्लें हैं, वही इसके जिम्मेदार हैं और चपेट में आते हैं. और नतीजा होता है कि सीधे साधे आदमी भी, सीधा साधा घराना भी, तब इसका बुरा असर होता है. लोग चोरी, डकैती, मारपीट, मर्डर तक के लिए आपने बताया कि ये कारण मेन असल कारण यही है. उसको दौलत जमा करना नहीं है, बहुत बड़ा बिल्डिंग और घर नहीं बनाना है, बिल्कुल नशे के लिए वो पैसा बनाना चाहता है और इस तरह के काम को अंजाम देता है. नशा करने का प्रमुख कारण क्या है
0: सर? जब तक सप्लाई है तब तक डिमांड है
1: जी.
0: अगर सप्लाई का मेन चैन को रोक दिया जाए
1: जी,
0: तो डिमांड आपका बंद होगा सर
1: जी. जी,
0: लेकिन इतने बड़े बड़े लोग सप्लायर हैं, कानून प्रतिदिन अपना काम कर रही है.
1: जी जी जी,
0: कानून बहुत मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहा है, लेकिन इस कानून से भी ज्यादा शातिर ये लोग हैं.
1: मतलब हमारे ही समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस तरह की चीजें, उस तरह की दवाएं या ड्रग्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके नतीजे में बच्चे जो है, जो युवा पीढ़ियां है, उसके चपेट में आते हैं और फिर अपना जीवन जो है, अपनी जिंदगी वो बर्बाद कर लेते हैं. तो उम्मीद है कि सरकार या कानून, तो आपने बताया अपना काम कर रहा है कानून,
0: लेकिन मुस्तैदी के साथ कर रहा है,
1: के साथ काम कर रहा है. सरकार की बहुत सारी कोशिशें इस पर शुरू से चल रही हैं. अभी जैसा कि हम जान रहे हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान भी चल रहा है, और जरूरत है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं, पोस्ट पर हैं, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं. थोड़ा सोशल मदद भी जरूरी है. सामाजिक स्तर पर समाज के जो बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी इसके लिए
0: जागरूक होना
1: होगा और समझाना होगा. अगली बात जानना चाहेंगे कि कोई इसे अगर छोड़ना चाहे, जो हमारा खास सवाल है, जो युवा इससे पीड़ित हो गए हैं, अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए वो क्या करना होता है?
0: उनके लिए सर हम लोग रियायत खुल के बैठे हैं
1: जी.
0: आप आइए, हम जहाँ तक होगी हम आपको मदद करेंगे और इससे बाहर आपको निकालेंगे. अगर एक लड़का भी हम इससे बाहर निकालते हैं सर, तो मेरा जीवन उद्धार है.
1: उद्धार हो जाएगा, आपने समाज के ऊपर भी बहुत बड़ा उद्धार आपका होगा, और लगेगा कि मेरा दिल आपका खुश होगा, सीना आपका चौड़ा होगा, एक भी इससे आप निकाल पाए तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा?
0: यहाँ तक पहुँचने के लिए सर यहाँ आना होगा
1: जी.
0: या अगर वैसा अगर जरूरत पड़े तो माँ बाप हमको कॉल करें
1: जी,
0: हम उसको ले आएंगे
1: जी. और ये अगली बात जानना चाहेंगे, जैसे युवाओं को आप अपने तक लाने के लिए आपकी ओर से क्या कोशिश होती है?
0: लड़का लोग को यही कोशिश होती है सर कि अगर कुछ को असमर्थ है इलाज के लिए तो मेरे पास आए
1: जी.
0: हम जहाँ तक मेरे से मदद होगा
1: जी,
0: इसे दलदल से निकलने के लिए हम वहाँ तक हेल्प जरूर करेंगे
1: जी. और देखते हैं कि जगह बाय जगह आप लोगों का ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ होता है, इससे अगर वो चाहे तो उस नंबर से कॉन्टेक्ट करें और जगह पर आ सकते हैं. मेन है कि उसके अंदर या जो बच्चे या जो यूथ जो है इससे प्रेरित हो गए, पीड़ित हो गए हैं, उनको अपने अंदर ये
0: जागरूकता लाना होगा,
1: एक हौसला पैदा करना होगा, एक बड़ा सोच पैदा करना होगा, और एक उसको शपथ लेना होगा, अपने आप में एक अहद करना होगा कि हम इसको छोड़ेंगे जब ही से ये मुमकिन है. नहीं तो आपकी जो कोशिशें हैं, जो सरकार की कोशिशें हैं, उतनी कारगर नहीं देखेंगे जब तक हम
0: खुद से कोशिश नहीं करेंगे.
1: तो जब जैसे अब तक जैसे कितने लोगों को आपके यहाँ से इसका फायदा मिलता है?
0: लगभग करीब 1200 से 1300 लोग

0: उसका क्या असर देखते हैं बाद में फिर वो इसके
1: लगभग 70% लड़का लोग रिकवर
0: रिकवर कर गया आप अपने अपने रोजगार से लगे अपने काम में लग
2: गया काम कर रहे हैं सब
0: जी
2: बहुत लड़का लोग काम कर रहे हैं
0: जी
2: सबका आता है हमेशा पेपर में
0: जी जिसमें आप सक्सेस हो गए हैं जिन लड़कों ने इसको छोड़ दिया है उसकी खबरें भी आती हैं अखबार में भी आते हैं और सोशल मीडिया वगैरह में उसकी खबरें आती होंगी और जाहिर बात है कि ये बड़ी खुशी की बात है। और अगली बात हम जानना चाहेंगे नशा पान का समाधान और बचाव क्या हो सकता है।
2: बचाव है क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि जागरूकता
0: जी
2: होना जरूरी है
0: जी।
2: शिक्षा होना जरूरी है जिससे हम नशा के प्रति जो लॉसेस होता है नशा के प्रति जो हमको आज मेरा शरीर लॉस कर रहा है मेरा परिवार से हम दूर होते चल जा रहे हैं और समाज से दूर होते चल जा रहे हैं तो इससे जागरूकता की जरूरत है। समाज को इसमें पहल करना चाहिए और घर वालों को भी चाहिए कि अपने बच्चे से बहुत प्यार से रहे और उसे हर तरह का कचकच बंद करे तो उसे प्यार से समझाने से सर नशा जरूर डाइवर्ट करेगा जरूर पॉजिटिव पॉइंट में लगा आएगा।
0: अच्छा जो ड्रग्स लेने लगते हैं उसको खान पान में भी उसका असर पड़ने लगता है। आपने शुरू में बताया बात कि उसका आंत में सिकुड़न आना शुरू हो जाता है जिससे वो खाने पीने की कमी करता है भूख लगनी कम होती है और शरीर उसका डैमेज हो जाता है। जो छोड़ चुका है जो छोड़ना चाह रहे हैं या जो छोड़ चुके हैं उनको खाने पीने की तरफ कुछ या उसके लिए ध्यान देना होगा।
2: हाई प्रोटीन का खाने का जरूरत है उसको
0: जी
2: हाई प्रोटीन का जरूरत पड़ता है जिससे उसका शरीर में तनाव ना हो खिंचाव न हो
0: जी। अच्छा जो बच्चे ग्रसित होकर के आपके यहाँ सेंटर में आ जाते हैं तो उनका कितना समय में वो ठीक हो जाते हैं?
2: 3 से 4 महीने
0: में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसी बीच हमारे दरमियान है कि युवा जो गलती से इसके आदि हो गए थे लेकिन इन्होंने शपथ लिया अपने आप में ये फैसला किया कि हम इसको छोड़ेंगे और एक अच्छी जीवन जिएंगे अच्छा जीवन शैली अपनाएंगे और समाज के लिए एक बेहतर प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। तो हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम पुरुषोत्तम देव मेहता हुआ
0: जी।
3: मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ
0: जी जी।
3: मैं कुछ टाइम पहले अपना फ्रेंड सर्कल की वजह से मैं इस नशा के बीच में फंस गया
0: जी जी।
3: मुझे निकलने में थोड़ा टाइम लग गया बट मैं अभी ठीक हूँ
0: जी। ठीक है तो आप इसे कितने दिनों से आप इसको लेना छोड़ दिए हैं?
3: मैं अभी 1 ईयर क्लीन हूँ 1 साल तक हो गया मेरा।
0: 1 साल आपका हो गया तो अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं?
3: बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ पहले से बेटर महसूस कर रहा हूँ।
0: बेटर महसूस कर रहे हैं और अच्छा लग रहा होगा अपने आप में?
3: बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी नशा छोड़ के मैं अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी रहा
0: हूँ। एक नई जिंदगी एक खुशहाल जिंदगी आप महसूस कर रहे हैं और समाज के बीच भी आपको उसका उसकी इज्जत मिल रही होगी।
3: बिल्कुल
0: और जब इसमें आप ग्रसित रहे होंगे या इसके आदि रहे होंगे तो सब क्या आप महसूस कर रहे थे?
3: उस टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपना लाइफ को अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहा हूँ
0: जी जी।
3: मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आने लगी
0: जी
3: बहुत सारी दिक्कतें आने लगी मेरा फैमिली मेरे वजह से परेशान रहने
0: जी,
3: लगा
0: जी, जी।
3: मैं खुद भी परेशान था उस टाइम में
0: जी।
3: मुझे चिड़चिड़ापन लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी मुझे नशा छोड़ के बहुत अच्छा महसूस कर हो रहा। और
0: तो पुरुषोत्तम जी आप पहले एक गलती से ऐसे संगत में चले गए थे जिसकी वजह से आप उसके आदि हो गए और बहुत कुछ झेला आपने समाज के लिए आप निष्कासित हुए आपका तनावपूर्ण जीवन रहा लेकिन जब आप छोड़ चुके हैं आपने कहा कि लगभग 1 साल से मैं छोड़ चुका हूं और अच्छा जीवन जी रहा हूं बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और हम चाहेंगे कि आपके जैसा और भी युवा हैं इसको छोड़ने का फैसला करें ताकि वो भी खुश रहें और समाज के लिए भी वो बेहतर प्रेरणा बने और देश की उन्नति की भी वो वजह बने और देश को आगे ले। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इसको छोड़ना चाह रहे हैं या जो इसमें नहीं आए हैं और आए ही नहीं इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: बिल्कुल मैं अभी का यूथ को यही बोलना चाहूंगा कि नशे में जिंदगी नहीं है दोस्त
0: जी।
3: नशा छोड़ के बहुत अच्छा जिंदगी है
0: जी।
3: तो उससे निकलिए और अपने जिंदगी को अच्छे बेहतर तरीके से जिए
0: जी। तो बिल्कुल आपने अच्छा संदेश दिया यूथ को और हम चाहेंगे कि हमारे यूथ जो इस संगत में आ गए हैं वो छोड़े अपने आप में फैसला लें हिम्मत करें और फिर वो बेहतर जीवन जिए समाज के लिए एक प्रेरणा बने।
3: बिल्कुल
0: प्रशासन जी आप जुड़े हमारे साथ और अपना अनुभव साझा किया इसके लिए आपका तो हम आपको धन्यवाद देते हैं।
3: धन्यवाद।
0: हमारे बीच एक और युवा है क्या नाम है आपका?
4: रेहान रजा।
0: रेहान रजा आपका नाम है। आप ये नशा के जंगल में किस तरह से आ गए थे?
4: दोस्तों के सर्किल में रहते रहते।
0: अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं?
4: बहुत अच्छा फील करते हैं अभी नशा छोड़ गए।
0: नशा छोड़ के अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं?
4: हम तो यहीं के दामोडी के।
0: यहीं दामोडी के हैं। तो कितने दिनों से आप छोड़ चुके हैं?
4: मेरा लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया।
0: 6 महीने से ऊपर हो गया। तो अभी आप नॉर्मल लाइफ आप जी रहे हैं?

0: आप भी खुश हैं, आपके घर वाले भी खुश हैं। तो रायहान साहब, आपने भी अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, और आपके साथ हम भी चाहेंगे कि जो युवा हैं इससे बचें और देश को उन्नति की ओर ले जाएं, क्योंकि देश की जो उन्नति है वो युवाओं के कंधों पर ही है। वो अच्छे रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, तो देश और समाज भी स्वस्थ होगा। आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जमीन साहब, आखिर में आप युवाओं को, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इससे इस ओर अग्रसर ना हो?
1: इससे निकलने का जरूरत है सर युवाओं को जी। अगर इससे नहीं निकलते तो एक पीढ़ी हम लोग का सर ना तो रोजगार मांगने के लायक रहेगा
0: जी,
1: ना न्याय मांगने के लायक रहेगा
0: जी,
1: ना शिक्षा का मांगने के लायक रहेगा
0: जी जी जी।
1: इससे एक पीढ़ी खत्म हो जाएगा
0: जी जी।
1: अगर इसको, इसके पीछे अगर नहीं ध्यान दिया जाए सर, इससे नशा से नहीं निकाला जाएगा युवाओं को सर, तो एक पीढ़ी दरस्त हो जाएगी।
0: दूसरी नस्लें जो आएंगी वो भी देख कर वो भी इस ओर आ जाएंगी, और नतीजा इसका ये होगा कि मतलब परिणाम बहुत बुरा होगा,
1: बहुत बुरा होगा,
0: और उसमें देश को भी नुकसान होगा। तो आप जैसे लोग और हमारे सरकार की तरफ से भी बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, नशा मुक्त भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। हम चाहेंगे, आप चाहेंगे, सरकार भी चाह रही है कि देश इससे नशा मुक्त या और समाज हमारा जो नशा मुक्त हो और उन्नति की ओर हमारा देश जाए। आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर विशेष भेंटवार्ता, नशापान से होने वाली गंभीर समस्याएं और समाधान। बता रहे थे नशा मुक्ति केंद्र के संचालक मोहम्मद जमील अख्तर, और उनसे बातें कर रहे थे मोहम्मद अली सबीर अंसारी, और प्रस्तुतकर्ता थे इस कार्यक्रम के विक्रम कुमार रंजन।

तो आप सुन रहे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग और आइए जानते हैं मौसम का हाल। आज सूर्यास्त होगा संध्या 6:45 पर और कल सूर्योदय होगा सुबह 5:07 पर। 41 डिग्री तापमान अधिकतम रहेगी और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगी। आर्द्रता अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम भी 22 डिग्री सेल्सियस रहेगी।

और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और झांकते इतिहास के पन्नों में कि कौन कौन सी खबरें हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई हैं। में 1498 में चीन में पहला टूथ ब्रश बनाया गया। आधुनिक टूथ ब्रश के पहले मॉडल को चीन के राजा ने पेटेंट कराया था। 1714 में स्पेन और नीदरलैंड ने व्यापार और शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और भारत ने 3 बीघा गलियारा 1999 वर्षों के लिए बांग्लादेश के पट्टे पर दिया।

साल 2000 में और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जमाली का इस्तीफा और सुजात हुसैन नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने साल 2004। और साल 2008 में बहुराष्ट्रीय कंपनी रियो टो ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर जिले के तहत हीरा खनन के लिए खनिज पट्टा माइनिंग लीज हासिल कर बंदर डायमंड प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की।

और आइए जानते हैं किन किन हस्तियों का 26 जून को जन्म हुआ। भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह का जन्म हुआ 1992 ईस्वी में आज के दिन। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनका जन्म हुआ 1969 ईस्वी में आज के दिन। जैन धर्म के भारतीय दिगंबर पंथ के प्रसिद्ध मुनि थे तरुण सागर, जिनका भी जन्म हुआ 1967 ईस्वी में। और गोवर्धन मेहता, जिनका जन्म हुआ 1943 ईस्वी में, यह भारतीय शोधकर्ता और रासायनिक वैज्ञानिक हैं। केंद्र सरकार में रक्षा सचिव और राज्यसभा में महासचिव पद पर रहे थे योगेंद्र नारायण, जिनका भी जन्म हुआ 1942 ईस्वी में आज ही के दिन। और आइए अब जानते हैं किन किन हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कहा। प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शास्त्री दुग्वेकर, जिनका भी निधन हुआ 1961 ईस्वी में आज ही के दिन। और भारतीय राजनीतिज्ञ, जाने माने समाज सेवक और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सह संस्थापक थे गोपाल रामानुजम, जिनका भी निधन हुआ साल 2001 में आज ही के दिन। और भारतीय फिल्म निर्माता यश जौहर, जिनका भी निधन हुआ साल 2004 में आज ही के दिन।

भगवत गीता का पाठ किया जाएगा झील सेंटर में संध्या 6:30 पर, और मोहर्रम मेला का आयोजन होगा छरवार डेम में, समय है 2:00। कोयले के डस्ट से जिले के 1328 में से 418 गांव प्रदूषित हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं लोग। और अतिक्रमण से सिकुड़ता जा रहा है ताजपुर का सिमरिया तालाब।

कटकम सांडी और कटकम दाग में बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। मलेरिया से बचाव एवं नियंत्रण के बारे में लोगों को जागरूक किया। छड़वा डैम मैदान में 13 गांवों के अखाड़े दिखाएंगे करतब। और हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल स्थानीय पुलिस ड्यूटी में 2026 में स्वर्ण पदक, 5 स्वर्ण पदक के साथ हजारीबाग ओवरऑल चैंपियन और चतरा रनर अप रहा। तो ये थे स्थानीय खबरें।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते अपने मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

रंग तरंग रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले छाया गांगुली की आवाज, जमीर काजमी के बोल है।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज कुछ ऐसे गाने जिनमें हैं बारिश के छींटे। लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत, सुमित्रा कुमारी सिन्हा के बोल हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में यह गैर फिल्मी गीत आपने सुना।
1: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थीं, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। हवा की सांस क्यों सहमी हुई है, मेरी वाकिफ थी जब आती थी कमरे में, मेरे सीने में भर जाती थी जैसे बादवां भरते हैं कश्ती के। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे। बिलकती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है, न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।
0: मौसम का झोंका गुलजार की आवाज में आपने सुना, उनका ही ये कलाम ये कब आते हो एल्बम से था। और अब भूपिंदर की आवाज़।

0: चंदनदास की आवाज में ये निदा फाजली का कलाम था। विविध भारती पर रंग तरंग।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?

0: रंग तरंग अब सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग। हमें खेद है कि आखिरी गाना आप ठीक से नहीं सुन पाए। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन

0: उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यादों की महफिल।

कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसा।

शैलेंद्र के बोल थे एसडी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम गाइड। यादों की महफिल विविध भारती से। अगला गाना आनंद बख्शी की आवाज में, उन्हीं की रचना है, फिल्म का नाम बालिका वधू।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। अशोक भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजें, गुलशन बावरा, राहुल देव बर्मन, सत्ते पे सत्ता।

आनंद बख्शी के बोलते रेशमा की आवाज, फिल्म का नाम था हीरो। जावेद अख्तर की बोली, अमिताभ बच्चन की आवाज शिवहरी की तरह से, फिल्म का नाम सिलसिला।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में हम एक इबारत, एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और वो टेक्स्ट कार्यक्रम के काफी पहले पोस्ट कर दी जाती है, आज भी कर दी गई है। तो आज की इबारत आपको बता दें, बदरा की गागरी में ढेर सारा पानी, मन को रंगीला करे बारिश की कहानी, इन हवाओं में चलो उड़ चले कहीं, ना आसमां का पता हो ना दिखे जमी, ऐसे मौसम में जाने क्या क्या याद आए, कभी मन मुस्कुराए कभी आंख भर जाए, दिन में एक बजे जब मिलेंगे हम, गीतों का हाथ पकड़कर साथ चलेंगे हम। भाई, इस टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे श्रोताओं के रिएक्शंस हमारे पास आ गए हैं और इन तमाम रिएक्शंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो एक दूसरे के साथ इस कार्यक्रम का सफर हमें आगे तय करना है। एक श्रोता है जिन्होंने कविता का जवाब कविता से दिया है। वो लिखते हैं, इबारत की इजाद वाले स्वयं पधारे हैं, आज सफरे कारवां के भाग्य न्यारे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीला सफर में गानों की बौछार होने लगी है, जो बारिश की बूंदों की तरह टिप टिप कानों में एक मधुर आवाज घोल रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट। एक श्रोता है जिनका अंदाजा है कि आज तो गागरी वाला मशहूर गाना बजेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि और कोई गीत हो ना हो लेकिन ये गाना जरूर होना चाहिए कि रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, फिर से आई यो बदरा विदेशी और जब जब बाहर आई। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज फिर बारिश की कहानी में पानी, कैसा है आपका रंग जिंदगी का शोर, बारिश के तारों पर आई बारिश, याद है वो कागज की नाव वो बारिश का पानी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर लिस्ट भेजी है, यानी इस इबारत में जितने शब्द हैं उन शब्दों पर गाने, और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर गाने मैच कर रहे हैं। जो शब्द इन्होंने चुने हैं, बदरा, गागरी, पानी, मन, रंगीला, बारिश, हवा, उड़, आसमान, जमीन, ओ हो हो, 20 शब्द चुन लिए हैं। क्या बात है, क्या मेहनत है, सलाम। और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों पर अपनी बातें कही हैं। आप सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी इस गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज। क्या आपका गाना हमारे गाने से मैच किया? पर हां, एक और बात, आपके शहर में बादल सिर्फ छाए हैं या बरस भी रहे हैं, और जब छाते हैं बदरा आपके मन में आती हैं कौन सी बातें? जल्दी से विविध भारती के फेसबुक पोस्ट पर जाइए और कीजिए कमेंट।

विविध भारती का फेसबुक पोस्ट खोजने के लिए फेसबुक पर सर्च बॉक्स में लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। फिर पहुंचिए सुरीला सफर की पोस्ट पर। देखिए बादल छा गए हैं, कचरा घुलने लगा है, घटाएं बरसने लगी हैं। इस गाने में महिला स्वर किस गायिका का है ये बताइए।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर उपराष्ट्रपति ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को दोहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ी सबसे मजबूत लड़ाई। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 28 जून से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में की बढ़ोतरी, 1 जुलाई से नई दरें होंगी लागू। मुहर्रम जुलूस को लेकर रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव। 27 जून को कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर रहेगी रोक। और रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बैंड ताशा पार्टी के 7 सदस्यों की मौत, आक्रोशित लोगों ने NH-23 किया जाम। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन सहित कई नेताओं ने नशा मुक्त भारत का संदेश दिया। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन अपनाने का आह्वान किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में जुटे सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के विरुद्ध मजबूत लड़ाई लड़ी है। सरकार की कार्रवाई से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले कई गिरोहों का सफाया किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से नशा मुक्त समाज के संदेश के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने बताया कि रैली व्यवहार न्यायालय परिसर से शुरू होकर सुभाष चौक तक गई और वापस न्यायालय परिसर पहुंचकर संपन्न हुई।
1: 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध दिवस एवं अवैध चक्री दिवस के अवसर पर जामताड़ा जिले के सभी प्रखंड ब्लॉक में आज जागरूकता कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसके तहत व्यवहार न्यायालय से परिसर से पूरे सुभाष चौक होते हुए पूरे जामताड़ा में जागरूकता कार्यक्रम रैली निकाली गई। नशे के ऊपर प्रचार किया गया और लोगों से अपील की गई कि वो नशा न करें, क्योंकि नशा करने से भविष्य खराब होता है।
0: रांची जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 से 30 जून तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान जन्म से 5 वर्ष तक के लगभग 5,05,524 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद तथा दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन 28 जून को जिले के 3,893 पोलियो बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, जबकि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक देंगी। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। एक रिपोर्ट।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र में फायर सेफ्टी जांच अभियान के दौरान 17 संस्थानों के निरीक्षण में 14 संस्थान सुरक्षा मानकों पर फेल पाए गए। अपर नगर आयुक्त जितेंद्र यादव ने संचालकों को तत्काल फायर सेफ्टी उपकरण अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। निगम ने अभिभावकों से भी नियमों की अनदेखी की सूचना देने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह आज देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में दर्शन किए और देश तथा समाज की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। केंद्रीय मंत्री के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को नमन करते हुए कहा है कि उनका बलिदान आज भी करोड़ों लोगों को सत्य, न्याय और इंसानियत की राह पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास का प्रतीक है। मुहर्रम के अवसर पर कल निकलने वाले जुलूस को देखते हुए रांची शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 10 बजे से जुलूस समाप्त होने तक अपर बाजार, महावीर मंदिर चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, सरजना चौक, मेन रोड और राजेंद्र चौक सहित कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य और यात्री वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और आवश्यक होने पर ही इन क्षेत्रों की ओर जाने की अपील की है, ताकि मुहर्रम जुलूस शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। रांची नगर निगम चुनाव के 3 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी महापौर, उपमहापौर और पार्षदों का मानदेय तय नहीं हो सका है। रांची के मेयर रोशनी खलखो ने कहा है कि फंड और मानदेय नहीं मिलने से नगर निगम के नियमित कार्यों और विकास योजनाओं के संचालन पर असर पड़ रहा है।
3: मानदेय एक सम्मानजनक हो ऐसा हम लोग भी चाहते हैं, और पहले भी मानदेय की सुविधाएं थी, इसलिए सरकार से आग्रह किया है। जब चुनाव हम लोग जीत करके आए तो एक पत्र के माध्यम से सरकार को हमने अवगत भी कराया है, तो जल्द से जल्द उन्हें सम्मानजनक एक मानदेय मिलना ही चाहिए, ताकि सुविधाएं जनप्रतिनिधि है उनको मिल सके।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपये प्रति किलो है। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर बारलोंग के पास हुए भीषण सड़क हादसे में बैंड ताशा पार्टी के 7 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार कोयले लदे ट्रक ने ओवरटेक करने के दौरान सवारी वाहन को टक्कर मार दी। हादसे के बाद सभी घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH-23 जाम कर सड़क सुरक्षा की मांग की। रांची के JSCA स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने JSCA प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि इस मामले में JSCA अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए।
4: अगर उनका पास चेक नहीं होना है, फ्री एंट्री है, तो जैसे ही कोई आया उसको स्टेडियम के अंदर एंट्री मिलनी चाहिए, लेकिन उनको सुबह से शाम तक खड़ा रखा गया और भीड़ जब बेकाबू हो गई तो बेकाबू भीड़ में गेट खोला गया, जिससे बैरिकेड टूटे, महिलाएं घायल हुई, बच्चे घायल हुए, कोई व्यवस्था महिलाओं की अलग से नहीं थी, बच्चों के लिए नहीं थी।
0: झारखंड T20 क्रिकेट लीग फाइनल के दौरान रांची स्टेडियम में हुई भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद SSP राकेश रंजन के नेतृत्व में SIT गठित कर 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर उपराष्ट्रपति ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को दोहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ी सबसे मजबूत लड़ाई। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 28 जून से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में की बढ़ोतरी, 1 जुलाई से नई दरें होंगी लागू। मुहर्रम जुलूस को लेकर रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव। 27 जून को कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर रहेगी रोक। और रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बैंड ताशा पार्टी के 7 सदस्यों की मौत, आक्रोशित लोगों ने NH-23 किया जाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: पूछता और करीब 3 पतंग काटी, मजा आ गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पतंग से सिर्फ ये

याद आता है कि रफी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हमको उड़ानी तो नहीं आती है, पर अपने भाई की चकरी जरूर पकड़ कर रखते थे। रफी साहब को ही नहीं बल्कि मन्ना डे को भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पतंग बहुत बनाई लेकिन कभी किसी से पींच नहीं लड़ाया, बस ऐसे ही पतंग उड़ाने में मजा आता रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमीरगढ़ राजस्थान से हम लिख रहे हैं और कल ही तेज बारिश हुई है। उसके अलावा एक और श्रोता पतंग की बात पर लिखती हैं कि मेरे भाई कांच की बोतल को फोड़कर पीसकर महीन करके उससे मांझा सूतते थे और मैं पतंग तो उड़ा नहीं पाती थी लेकिन लटाई पकड़ने का काम मेरा होता था। भाई बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें जो छोटे होंगे और उनके बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी, जाहिर है कि पतंग उड़ाने का काम जो है वो बड़े भाई या बड़ी बहन को होता मिलता था और चक्री पकड़ने का काम छोटे भाई बहनों को मिलता था। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ चक्री पकड़ने का काम मिला और आपने कई बार ये जोर दिया कि भाई मुझे भी तो दो, मुझे भी तो जरा पतंग उड़ाने दो। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज की इबारत पकड़कर मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं। मन को रंगीला करने वाली बारिश की कहानी बताना चाहूंगा कि शादी के अगले साल मैं और पत्नी बारिश के मौसम में अजमेर से लूनावाला खंडाला गए थे। किराए पर बाइसाइकिल ली और भीगते हुए दोनों घाटों तक चले गए। ना आसमां का पता था ना जमी का, बस खाइयों का नजारा था। अच्छा अच्छा, ना आसमां का पता हो ना जमी का, इस पंक्ति से उन्हें याद आ गई अपनी ये बात। एक और श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को हमारे यहां पतंगबाजी होती है। और इसके अलावा एक और श्रोता वो लिखते हैं कि जयपुर में हमारे यहां कल बहुत बरसात हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बारिश में कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब परीक्षाएं मई जून तक खिंच जाती थीं और समझ नहीं आता था कि पढ़ाई करें या बारिश के मजे लें। इसके अलावा एक और श्रोता है वो लिख रही है कि क्या बोलें, ये बारिश की कहानी आपके लिए, बादल आ भी जाए तो डिलीवरी का पता नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो बारिश के इंतजार में हैं और कई श्रोताओं ने जिस तरह से पतंग की यादें बांटी हैं, हो सकता है कि कुछ और श्रोता अभी रह गए हों और उनके कमेंट्स आते ही होंगे, तो उनकी बातें भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तब तक जरा आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ, जो बहुत ही झुमा देने वाला गाना है। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी, लता मंगेशकर की आवाज। इस गाने के गीतकार का नाम बताइएगा।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना गीतकार नीरज ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारा बेटा 1000 रुपए की पतंग लाता है संक्रांति में, दोस्तों के साथ खूब उड़ाया करता था। अब पोते छोटे हैं और वो थोड़े थोड़े मजे लेते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो सूरत गुजरात में है और वो भी इसी तरह पतंगबाजी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट हैं। सौराष्ट्र गुजरात के हमारे कुछ श्रोताओं के ये मैसेज हैं कि किसान वहां बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि बुवाई समय पर हो। अभी तक जमीन में बीज पड़ जाने चाहिए थे लेकिन देर हो चुकी है, बारिश नहीं आ रही है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि बचपन में पढ़ाई के दौरान मई जून में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शाम को बहुत पतंग उड़ाई है। और एक

लिख रहे हैं कि ये सही बात है कि छोटा भाई मैं था तो बड़े भाई साहब पतंग उड़ाते थे और मेरा काम था चकरी पकड़ना, पर मैंने ये महसूस किया कि चकरी पकड़ना भी एक कला है। एक और श्रोता लिखते हैं कि ना तो मैंने चकरी पकड़ी ना पतंग उड़ाई, लेकिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखने में बड़ा मजा आता था और जब पतंग कटकर आती थी छत पर तो जल्दी से उठाकर अपने बड़े भाई को दे देती थी। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे गांव में यदा कदा कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं और खास त्योहारों पर उड़ाते हैं। बचपन की याद ये है कि 2 पैसे में 4 पतंग लेकर आते थे और उड़ाते थे। अहमदाबाद में 2 साल पहले 2 महीने मैं वहां रहा तो आसमान पतंगों से भर गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ा करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि पतंग से पींच लड़ाने में मजा तो बहुत आता था, लेकिन कई बार ये होता था कि दूसरे की पतंग काटने के चक्कर में अपनी ही पतंग उड़ जाती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे चक्री पकड़ा दी जाती थी जो इतनी तेजी से घूमती थी कि डर लगता था। तो ये पतंग की बातें बातों बातों में इतनी दूर तक चली आई कि अब हम चल रहे हैं आसमां के नीचे।

ये बताइए कि आज सुबह से आपके होठों पर, आपके जहन में कौन सा गाना तैर रहा है? आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके दिलो दिमाग पर हावी है?

भाई ये गाना हो गया और बहुत सारे श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं हमने शामिल करने की लगातार कोशिश की और अभी भी जब भी कोई गाना खत्म होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सभी श्रोताओं के जो कमेंट इस बीच में आए हैं वो सभी शामिल कर लिए जाएं। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हाँ आपके गाने और हमारे गाने मैच हो रहे हैं। एक श्रोता पता नहीं लपक झपक तू आर्य बदरवा गाने का जिक्र कर रहे हैं और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो गाने का जिक्र कर रहे हैं। ये उनके जहन में गूंज रहा है ये गाना लपक झपक तू आर्य बदरवा। इसके अलावा एक श्रोता के जहन में गूंज रहा है सिमटी सी शर्माई सी। एक और श्रोता हैं जिनके जहन में आज रपट जाए गूंज रहा है तो किसी के जहन में सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दी जा रही। देखिए किसने तरह के गाने हमारे अलग अलग श्रोताओं के जहन में गूंज रहे हैं। एक श्रोता लिख रही है कि इतना समय ही कहां कि कोई गीत जहन में गूंजे, ऊपर से मौसम का मिजाज गर्म, हाय गर्मी उफ गर्मी यही उनकी जुबां पर है। चलिए भाई ठीक है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनकी जुबां पर सुबह से है नैनों में पतरा छाए। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि अकोला में हम शाम को समय निकाल कर बहुत पतंग उड़ाया करते थे। और इसके अलावा कई और श्रोता है जो बारिश की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बारिश के इंतजार में हम लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंग उड़ाने वाले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका मांझे से हाथ ना कटा हो। अभी कुछ साल पहले एक हृदय विदारक घटना सुनी थी कि मांझे से किसी व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो गया था। उसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शादी के बाद हम पहली बार मूवी देखने गए, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और हम दोनों के मुंह से निकला रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। आज भी ये हम दोनों का पसंदीदा गाना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ। आपके शहर में चाहे गर्मी हो, चाहे बादल छाए हो, चाहे आप गर्मी से हो हलाकान या परेशान, पर कम से कम ये गाना तो हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। किस फिल्म का है ये गाना ये बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि जब मौसम सुहाना होता है तो आपके होंठों पर कौन सी पंक्तियां आती हैं।

पतंग की बातें क्या हुई, बहुत सारे श्रोताओं की बचपन की यादें ताजा हो गई हैं, कई श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और वो सभी अपने बचपन को याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखती है, बरखा रानी जरा जम के बरसो हमारे ग्वालियर में भी, इसका मतलब उनके शहर में भी बारिश नहीं हुई है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अनवर को याद किया है, जिनकी आवाज में ये गाना था मौसम मौसम लवली मौसम। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है सचिन और पद्मिनी कोल्हापुरे की आवाजें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे जहन में गूंज रहा है गाना छतरी न खोल बरसात में। और इसके अलावा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना था, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा। एक श्रोता को ये कंफ्यूजन हुआ कि ये त्रिशूल फिल्म का गाना है, जो कि गलत जवाब है। उसके अलावा एक श्रोता ये हैं जिनका कहना है कि इस तरह के गानों को सुनकर मौसम अपने आप ही लवली हो जाता है। गीतकार का नाम है गुलजार, संगीतकार का नाम है खयाम साहब। तो फिर आगे बढ़कर जरा देखें, एक श्रोताएं लिखते हैं कि हमने कोलकाता में भी पतंग उड़ाई थी, विक्टोरिया मैदान में पतंगबाजी देखी, जवानी में बहुत लंबे लंबे पींच लगाए हैं, पतंग बहुत छोटी सी नजर आती थी जब आसमान में ऊंचाई पर उड़ा करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दसवीं की बात है, बारिश का मौसम था, शाम का समय था जब मैं कोचिंग जा रहा था, रोड के किनारे काफी गहरी नाली खुदी थी, उसमें पानी भर गया था, बरसात हो रही थी, तो सोचा थोड़ी सी चप्पल इस पानी में धो लेता हूं, लेकिन जब मैं उसमें डूब गया, मेरा रजिस्टर छतरी के ऊपर तान में रखा हुआ था और मैं पूरा भीग गया था, लेकिन मेरी छतरी और मेरा रजिस्टर बच गया।

सुनाई देता है वही जहन में गूंजने लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंगबाजी के कार्यक्रम के बाद खाने की सामग्रियां खाई जाती हैं, ये शायद संक्रांति को याद कर रहे हैं, तिल के लड्डू और अलग अलग तरह की मिठाइयां, ये सारी चीजें याद की हैं। और इसके अलावा जो बहुत नीचे के कमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, तो उनमें कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने, अब जैसे ये श्रोता है, इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी बहन भाइयों को पतंग बांट कर देते थे, खरीद कर देते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़ी सी चीज की लालच देकर मेरी सारी पतंगें अपने कब्जे में कर लिया करते थे। ये बचपन की याद उनको आ गई है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता है, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में बहुत पतंगें उड़ाई हैं और 15 फीट ऊंची छत से गिरकर बगैर चोट खाए खड़े भी हो गए। ओहो हो, खतरनाक बात है भाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 67 साल से ज्यादा की उम्र है और 15 से 20 पतंग और चरखियां एक समय में मेरे घर पर हमेशा होती हैं। आसपास कोई उड़ाता तो नहीं है, लेकिन मैं काफी ऊंची पतंग 1 घंटे तक उड़ाता हूं, ये बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है। ओ भाई, ये श्रोताओं की बातें। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या यही कैफियत आपकी है जो इन साहिबा की है। बारिश का इंतजार है और तमाम बातें हो रही हैं, तो बारिश में की गई किसी रेल यात्रा की यादें हमारे साथ साझा कीजिए।

कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार पैसेंजर ट्रेन का लंबा सफर बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ करते थे, टीन वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीगकर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफर की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है, और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था, मैंने उससे पेंच लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए, पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताजा हो गई हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। किस फिल्म का है ये गाना?

भाई ये गाना खत्म हुआ और कार्यक्रम के आखिरी मकाम तक हम आ चुके हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट आया जिसमें उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है, फटाफट पढ़ देते हैं। रिमझिम बूंदों का खिड़की को खटखटाना, लगता है आया है गुजरा हुआ जमाना, कागज की कश्तियों का वो पुराना, वो दौर पुराना, छत से वो गिरते हुए पानी को चुराना, उस ओंधी सी मिट्टी की खुशबू का आना, बचपन की वो यादें फिर से बुलाएं, कभी मन मुस्काए कभी आंख भर जाए, खिड़की पे बैठकर चाय का प्याला, यादों ने फिर कोई किस्सा निकाला, भीगा है मंजर ये दिल भी है गीला, मौसम ने पहना है ये रंग सुरीला। सुंदर कविता है और आप सभी ने जिस तरह की सुंदर यादें बांटी हैं, कुछ बारिश वाले रेल के सफर की यादें हैं जो कार्यक्रम में शामिल हम भले नहीं कर पाए हों, लेकिन हम इन सभी यादों को आराम से बैठकर पढ़ेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने जमाने का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 34वीं कड़ी।

बारिसाल जैसी घटनाएं बंगाल में बार बार घटने लगीं। वंदे मातरम का नारा लगाकर अंग्रेजों का विरोध करना आम लोगों की नजर में एक रोजमर्रा की बात बन गई। यह विरोध अब और अधिक संगठित रूप से होने लगा। बंगाल में ऐसी घटनाएं जगह जगह होने लगी। पुलिस का डर ही नहीं बचा। यह लहर मजदूर वर्ग में भी

0: 1906 में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के लिए भगिनी निवेदिता कार्यरत थी। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्य भारती इस अधिवेशन में पत्रकार के रूप में उपस्थित थे। भगिनी निवेदिता के साथ हुई चर्चा के कारण सुब्रमण्य भारती के लेखन और विचारों को एक दिशा मिली। सुब्रमण्य भारती ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना था।
1: हिंदुस्तान मतलब जंजीरों से जकड़ी हुई दुखी माँ है, ऐसा भगिनी निवेदिता कहा करती थी। सुब्रमण्यम भारती पर भगिनी निवेदिता के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा।

0: वंदे मातरम शब्दों का उपयोग करते हुए एक ओर उन्होंने भारत के वैभव, इतिहास, संस्कृति का गौरव किया तो दूसरी ओर जातिवाद जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा,
1: भले हो यहाँ हजारों जातियां, पर न हो विदेशियों को यहाँ स्थान। एक माता के पुत्र हम चाहे लड़ें जितने, है फिर भी एक दूसरे के बंधु।

0: इंसान सुन, यहां आ, यहां कोई ऊंच नीच नहीं है। सुब्रमण्य भारती की ये क्रांतिकारी कविता है। इसमें वो इंसान को पुकार कर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। जाति धर्म ऊंच नीच का भेदभाव गलत है।
1: भारत वंदना इस प्रसिद्ध कविता में सुब्रमण्यम भारती लिखते हैं,
2: हमारी भारतीय माताएं बचपन में

0: विवाहित होकर अपना घर बसाती थीं। यहीं उन्हें एहसास होता था मातृत्व के आनंद का, संतान प्राप्ति के गर्व का। जगह जगह स्थापित हमारे मंदिरों ने बड़ों को आत्मा के सत्य की अनुभूति करा दी। काल प्रवाह में उनके विलीन होने पर उनकी संतानों ने वेदी की उनकी जगह ले ली। सत्य की उस स्मृति को मैं वंदन करता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: सुब्रमण्यम भारती ने तमिल भाषा में जो वंदे मातरम के दो अनुवाद किए वे इस प्रकार हैं।

0: तमिल के जैसे ही दक्षिण की तेलुगु भाषा में भी वंदे मातरम का अनुवाद हुआ। अनुवादक कवि थे लक्ष्मी नरसिंह पंतलु। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री में एक बड़ी सभा में बिपिन चंद्र पाल के सम्मुख वंदे मातरम तेलुगु भाषा में गाया गया। वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, मंद मंद मलयानिल जागृत निर्मल जीवन मधुर फलामृत, शस्य श्यामल कोमल गात्रा वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, श्यामल नीवे सरलवु नीवे धरणिवि भरणिवि सर्वमु नीवे, प्राणतुलीवे जननी भारतवनी वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, नीवे विदयक नीवे धर्मक नीवे हृदयक नीवे मर्मक, नीवे प्राणमु नीवे देहमु नीवे प्रेममु नीवे श्रेयमु, वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा। वंदे मातरम ये शब्द अब प्रत्येक भारतीय के हृदय में विराजमान हो गए थे।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 34वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: कौन लाया, कौन लाया।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत

0: इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT के सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है।

0: शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
2: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराय मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय

0: के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। में 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बिलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

0: भारती से बोल रही हैं, आइए सुनिए सदाबहार नगमे।
1: वो जब याद आए बहुत

राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज, वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।

0: बीते हुए दिन
1: किशोर कुमार की आवाज में दूर गगन की छांव में फिल्म का गाना था।

0: समाचार
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बंकिम चंद चट्टोपाध्याय को एक महान साहित्यकार बताया, जिनकी रचनाओं ने पीढ़ियों से भारतीयों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना को जागृत किया है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर क्षेत्र के करंजो में आयोजित दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठन विस्तार पर जोर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्हें आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया।
1: प्रशिक्षण के माध्यम से हम कार्यकर्ता का भी निर्माण करने का काम करते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे बूथ स्तर से लेकर के मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। संगठन का आंतरिक विषय होता है, हम चर्चा करने का काम करते हैं।
0: सरायकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और समाज को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से 1 से 15 जुलाई तक 15 दिवसीय योग, औषधि, दर्शन एवं नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। मारवाड़ी धर्मशाला में प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक आयोजित होने वाले इस निःशुल्क शिविर का संचालन योग शिक्षक एवं आयुर्वेद विशेषज्ञ वैद्य किशोर मिश्रा करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले में 28 से 30 जून तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान लगभग 5 लाख बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने बताया कि अभियान के सफल और शत प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं।
2: 28 से 30 तारीख तक पल्स पोलियो की दवाइयाँ पिलाई गई। 28 तारीख को गिरिडीह जिले के टोटल जो बूथ है 2,337 बूथ, उस पर बच्चों को जो 0 से 5 साल के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन, जो अभी BOP भी बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन की, जो उन दवाइयाँ दी जाए।
0: आज आशूरा ए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। मुहर्रम के अवसर पर कल रांची जिले में ताजिया और अखाड़ा जुलूसों के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री के निर्देशानुसार केवल पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अत्यंत आवश्यक होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देकर कराई जा सकेंगी। प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। सिमडेगा जिले की जलडेगा थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी आशीष साह उर्फ आशीष साव को गिरफ्तार किया है। SDPO DD पासवान ने बताया कि 14 अप्रैल को बांसचोर ओपी क्षेत्र में एक कार से लगभग 28 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था, जिसमें 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखियो नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है, तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: शीला सहनी, दिल्ली से।
0: शीला जी, क्या हाल चाल है? हाँ, शीला जी
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी हमारे भी हाल चाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के क्या हाल चाल है?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप ऊप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर निकलते वक्त छाता लेके
1: पी लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली। कौन
1: हेलो सहेली,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है। हाँ
0: निशा जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ,
0: क्या बात है,
1: विविध
0: शुक्रिया।
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी जी
1: और मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
0: अच्छा जी, निशा जी आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ में रहती हूँ
0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: जी। हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप में कर रही हूँ अब
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में
1: जी
0: हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
1: जी
0: योगा करती हैं? योग से जुड़ी
1: जी
0: हुई हैं?
1: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
0: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और तीन चार आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ। तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला। तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
1: जी
0: के साथ
1: हाँ,
0: खुशहाल हैं।
1: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें, आप सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए। जी
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम, जी
0: पूनम जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं तो मतलब बस हाउस वाइफ हूँ मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी, पूरे परिवार का
1: हाँ
0: ख्याल रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में, और ये कला जो
1: हाँ
0: होती ना, अद्भुत है
1: जी
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी,
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो आपसे बारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी। जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: एक बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का, मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दी।
0: नमस्ते। कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी मैं श्वेता भारती, जिला ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है दीदी, आप बताओ कैसी हो।
0: जी हम भी मजे में हैं, और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि
1: पर
0: आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी दीदी घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी
1: जी
0: बात
1: जी
0: है। और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने में?
1: मुझे मुझे गाने में आनंद मिलता है। और रेडियो सुनती हूँ, विविध
0: गाती भी है।
1: भारती बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी।
0: जी, और गाती भी हैं आप?
1: जी दीदी गाती हूँ। अच्छा,
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: गुनगुना के भी सुनाओ।
0: सुनाइए।
1: देवी जी के मंदिर में लट से बाहर आई, देवी जी के मंदिर

0: आई बरदाने मांगी आई मांगी भरे सिंदूरा मैं देवी जी से मांगी आई देवी जी के मंदिर में लट सेवा की आई।
1: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: जीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी।
1: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: कोई भी सुना दीजिए
1: जी, ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी
1: जी
0: कलाओं
1: जी
0: में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी है या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहां जहां मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश।

0: सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
1: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं, तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी,
0: ये
1: ऐसा
0: बहुत
1: मेरा
0: सही
1: मानना।
0: बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सई जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी है, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
1: जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है, वो मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते
1: धन्यवाद
0: गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है, वहां पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: हाँ हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने
1: जी
0: पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने
1: जी
0: उन उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है। आप क्या काम करती है वहां पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ,
0: वहां जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। मैंने प्रकाश बाबा आमटे ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा है
1: और
0: आपको
1: यहाँ
0: वहां जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। जी
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
1: जी
0: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
1: जी
0: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ हाँ मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको भी वहां पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो बताइए रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति देना, यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत

0: में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
1: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली। कौन
1: हेलो सहेली,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं

0: सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
1: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
0: जी हाँ जी।
1: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है, क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
0: हाँ पहली बार ही फोन लगाया है और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा, बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके।
1: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना
0: हाँ
1: जी,
0: जी
1: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है, तो यानी
0: जी
1: किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
0: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ, जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
1: ये तो बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
0: जी
1: सुनना चाहती हैं?
0: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है, मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
1: तो ये गाना
0: जी
1: गुनगुना के बताइए आप।
0: जी जी

0: तौबा रे दिल रुबा, दिल रुबा, दिल रुबा, दिल रुबा।
1: ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है और सिलाई करते करते रेडियो सुनती है।
1: जी,
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: विविध भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती हैं, व्यायाम करती हैं?
1: थोड़ा बहुत बस घर के कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखी जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: बिहार पटना से इंदु चौबे।
1: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
0: बढ़िया।
1: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
0: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर अब तो निश्चिंत की जिंदगी है, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से वीर भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
1: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही हैं, है ना?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, और विविध भारती सुनती हैं आप?
0: बहुत बचपन से, जब
1: बचपन,
0: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोर अवस्था से, तब से।
1: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
0: संगीत तो रच बस गया है, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से, मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उस तक कोर्स किया। अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने कही।
0: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया, और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
0: हाँ
1: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
0: जी
1: बदौलत
0: जी
1: आप तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला को ऐसे ही करना चाहिए कि कितनी भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है, अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा, और जब
0: जी
1: हम
0: जी
1: योग
0: बिल्कुल
1: करते हैं ना तो हमारा देखा सीखे बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज में।
1: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार है 400-24662, फिर से 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 2867-0288। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देवघर सर्किट हाउस में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और राष्ट्रीय जनता दल के देवघर विधायक सुरेश पासवान के बीच करीब आधे घंटे तक बैठक हुई। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और राज्यसभा चुनाव के बाद हुई इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। गिरिडीह जिले में 28 से 30 जून तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान लगभग 5 लाख बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा सिंह ने बताया कि अभियान के सफल और शत प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक और विधिवत पूजन किया। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के अधिकांश

हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया कि कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे।

जिसमें लॉ सबसे सही रहता था, क्योंकि 5 साल की छुट्टी और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सोने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की। हालांकि यहां लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था। उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हां, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलूनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था। हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सब की व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

0: हर पल गिन गिन।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन।

0: देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू, गांव फरांसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहां के बहुत से जीवों की आंखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहां चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहां उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोबा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने

0: जीवन में चरितार्थ किया।
1: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
0: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Come, please come here!
4: Oh, sure.

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।

0: नहीं नहीं।
1: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
0: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। पचासी में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो

0: ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग

0: ना होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
4: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
5: आग का गोला?
4: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
6: सूरज।
4: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
7: बहुत आसान पूछते हो।
4: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
7: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
4: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
6: हाँ।
4: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
7: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
4: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
8: वो तारा होता है।
4: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
9: वो रात और दिन भी बनाता है।
4: एकदम सही एकदम
8: वो
4: सही।
8: हमें धूप भी देता है।
4: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
7: धूप से एक ना अच्छी बात भी होती है।
4: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
7: विटामिन डी।
4: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत
8: और
4: अच्छे।
8: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
4: हाँ हाँ बिल्कुल,
7: पेड़ों को खाना भी देता है।
4: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
7: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
4: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
7: हाँ।
9: जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
4: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
7: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
4: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
7: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
8: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ

0: चल रहा
1: है ना।
0: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
1: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता।
2: हाँ।
1: तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना।
0: वो बहुत बड़ा भी होता है,
1: बहुत बड़ा होता है,
0: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
1: हम क्योंकि कई
0: दूर होता है, इसलिए
1: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
0: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
1: हाँ,
0: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
1: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
3: सर्दी।
1: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
0: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
1: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
0: है।
1: सूरज आग का गोला, लेकिन
3: सूरज आग का गोला लेकिन
1: फिर भी जीवन दाता है।
3: फिर भी जीवन दाता है।
1: धरती काटे चक्कर इसके।
3: धरती काटे चक्कर इसके।
1: लगे ये चलता जाता है।
3: लगे ये चलता जाता है।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।
3: सर्दी गर्मी बनते इससे।
1: ये दिन रात बनाता है।
3: ये दिन रात बनाता है।
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
3: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
1: सूरज ये
3: कहलाता है।
1: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
0: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
1: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
4: जल्दी आना, जल्दी आना।
1: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
0: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
1: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ की नहीं आऊँ?
0: वो भी दस पूछेंगे।
1: दस पहेलियाँ। चलो मैं भी
5: के साथ। मैं शीला कुमारी। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस पर आज खूंटी के मुरहू स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। झलसा के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं, शिक्षकों और स्थानीय लोगों को नशे के दुष्प्रभाव, एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों तथा निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गयी। नशा मुक्ति एवं अवैध तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर साहिबगंज में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष अखिल कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर क्षेत्र के करंजो में आयोजित दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठन विस्तार पर जोर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्हें आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया। गढ़वा जिला प्रशासन की ओर से रक्त की कमी से जूझ रहे मरीजों की मदद के लिए कल गोविंद उच्च विद्यालय मैदान में मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्र ने जिले के नागरिकों, युवाओं, सामाजिक संगठनों और स्वयं सेवकों से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की है। मुहर्रम के अवसर पर कल रांची जिले में ताजिया और अखाड़ा जुलूसों के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजेंद्र के निर्देशानुसार केवल पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अत्यंत आवश्यक होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देकर कराई जा सकेंगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार, जिसे हम रिले कर रहे थे अपने राज्य केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। आइए सुनते हैं चांदनी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है कटी पतंग।

आपकी कसम। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बारी।

कार्यक्रम खेती बारी सुने वालन सभी ग्रामीण श्रोता के ममता के दने से प्रणाम जोहार और स्वागत है नी कार्यक्रम में। तो हम उम्मीद करें कि कार्यक्रम में जरूर सभी किसान भाई बहन ग्रामीण श्रोता सब जुड़ गए होती, अपन अपन सब सुबह जो भोरे से जो काम निपटा के आराम से बैठ गए होती रेडियो खोल के। और उम्मीद करे है कि सभी किसान भाई बहन अपन अपन सब काम काज बेस्तरी से कर रहे होती और सब गांव घर दूरा सब बेस्तरी होते। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो गए है, तो सबसे पहले हम बता दिए कि हम कार्यक्रम में काका लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करबे कि कृषि के नई तकनीक का उपयोग हमने कैसे करिए और उकर साथे साथे हमने जरूरी संदेश है, गीत नाद है मनोरंजन लगी, और उकर बाद हम जानकारी भरल भेंटवार्ता भी लेके आए ही है। और साथे साथे हमने चर्चा करबे हम कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण विकास कैसे करिए। तो जैसन कि कृषि के क्षेत्र में देखा ग्रामीण श्रोता नया नया तकनीक आ गए है, जेकरा में देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेकरा हमने छोटा ये में हमने एआई कहो ही है, और ड्रोन सेंसर ये सब के प्रयोग होवे लगले है। और एकर से का हो गए कि भाई खेती में के काम बहुत ही बढ़िया से आगे बढ़ गए है। और ये प्रणाली से तू देखबा कि किसान के लागत कम और पैदावार बहुत बढ़ के आवे लगले है, जेकरा चलते किसान के पूरी तरह से आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हो वे में मदद हो जाए। और एक साथे साथे देखा कि कृषि ड्रोन और देखा कि रिपोर्ट सेंसिंग ई एगो

तकनीक है। एकरा से फसल में कीटनाशक, नैनो यूरिया और पानी के सही छिड़काव करे के मदद मिलो है, और जेकरा से समय पर ईंधन, श्रम सब जितना भी हो वो ओकर में भारी बचत हो जाए। देखा, समय भी बचलो, ओकर में ईंधन हो वो भी बचलो, साथे साथे मेहनत भी कम लगले। और एकर साथ देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गेलो और मशीन के पढ़े के जो तकनीक हो गेलो, एकर द्वारा तू देखबा कि मौसम के पूर्वानुमान और मिट्टी के गुणवत्ता इस सब सबके जानकारी ले सको है। और जेकरा से किसान के मतलब मोबाइल के ऐप के द्वारा बीमारी के पहचाने से समय पर सही ओकर निर्णय ले सको है थी। और एकर में सेंसर के पर आधारित जो सिंचाई होए लगले है, एकरा से भी मिट्टी के नमी, तापमान और जल स्तर के मापे के बहुत आसान हो गेले है। और जेकरा से तू पौधा के पानी भी उतने मिले हो जितना जरूरत पड़ो है। और एकरा से का होए कि भाई 40-60% पानी के बचत भी हो जाए है, जेकरा से तू आजकल जानबे करे कि पानी के स्तर कितना गिर गेले है। और ओकर से अगर इतना पानी अगर बच रहल है तो ये बहुत ही बेस बात है। एक साथे साथे देखा कि जियोपिनिक्स और आधुनिक जैविक खेती, एकरा में है कि भाई फायदा हो है कि फसल सूखा भी नहीं रहे है, और कीट के अगर हम नहीं भी कीटनाशक डाले ही ओकर जरूरत भी नहीं पड़े है, और जेकरा से पैदावार में भारी वृद्धि हुए है। और एकरा से का हो है कि भाई समय के बचत, और तोरा जो कीटनाशक हर समय डाले के जरूरत पड़े है ओकर से भी तू बच सका और तोर फसल भी नहीं सूखतो। तो देखा हमने बात करेल के भाई नया तकनीक से कैसे कृषि के क्षेत्र में हमने उपयोग करिए, और एकर बारे में हमने और भी बात करवे किसान श्रोता, ग्रामीण श्रोता भाई बहन सब। तो चला हम कार्यक्रम के शुरुआत में सुनाइए एक जरूरी संदेश, साथे साथे मनोरंजन लगी एगो प्यारा सा गीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो देखा अभी हमने सुने लिए गीत, और उम्मीद करो ये कि ये गीत सुन के सभी ग्रामीण श्रोता के जरूर बेस लगले हो। जैसन कि हम बात करे लिए कि भाई कि नवा तकनीक के उपयोग करके कृषि के क्षेत्र में सभी ग्रामीण श्रोता किसान भाई बहन उपयोग करके अपन जो खेती बाड़ी के काम के और आगे बढ़ा सको है। ठीक है कि देखा, और बहुत तरह के सरकारी योजना वगैरह भी चल रहे है, जेकरा से भी सभी किसान भाई बहन अपन अपन काम के वो योजना के लाभ उठा कर और ओकर और आगे बढ़ा सको है थी। ये नवा तकनीक अभी के जो नवा युग के किसान है थी, उन लोग ये तकनीक के प्रयोग करके और अपन खेती बाड़ी के काम के और बढ़िया बना के आगे बढ़ा सको है थी, ताकि भाई कम समय कम पैसा लगते और साथ में उपज भी बहुत ज़्यादा होते, और जेकरा से आर्थिक स्थिति सुधरते तो भाई देखा कि घर के आर्थिक स्थिति सुधरते तो चेंगा चुटियन सबके पढ़ाई लिखाई से लेके सारा चीज़ बढ़िया से चले लगते। और जैसन कि हम बात कर लिए कि भाई अभी जैसन के मौसम चल रहे ग्रामीण श्रोता जो पानी के अभी जैसन चल रहे कि अभी जीवन मतलब पानी के स्तर बहुत ज़्यादा नीचे चल गए है, और जेकरा हमनीन के ही सुधारे के है, कहे कि देखा कि अगर पानी के हमनी ढंग से प्रयोग करवे तो कृषि कार्य में भी बढ़िया रह तो, और साथ ही साथ घर के काम में भी हमनीन बढ़िया से होकर उपयोग करवे तो पानी बचते तो आगे भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी रहते। तो यही संदर्भ में आज हम एगो भेंटवार्ता लेके आए हैं कि हर बूंद की कीमत जल संरक्षण से समृद्ध भविष्य, एकर बारे में बतावे थी ब्रजेश कुमार, और इनका से बातचीत कर रही थी ममता कुमारी। तो बिना कुबेर कहले हमने सुने ही ये जानकारी। श्रोताओं, हम आए हुए हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से में, जो यहाँ पे बताएंगे कि हम लोग इस भीष्म गर्मी में किस तरह से पानी की बचत कर सकें, और ये हमें बता रहे हैं ब्रजेश कुमार जी जो यहाँ पे कार्यरत हैं। तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है ब्रजेश जी, साथ ही नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम, जोहार
1: जोहार। और सबसे पहले हमें बताइए कि आप कितने दिनों से यहाँ कार्य कर रहे हैं।
2: जी, मैं इस विभाग में कम से कम 8-10 सालों से कार्य कर रहा हूँ।
1: जी, बहुत अच्छी बात।
2: पानी जो एक जल ही जीवन है जिसको जी। बोला जाता है, तो पानी के बिना जीवन अधूरा है, और एक पानी ही नहीं, पानी के अलावा जो हम लोग साफ पानी जिसको जी, बोलते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल में बहुत सारे पानी पीने के कारण बीमारी हो जा रही है, जैसे कि टाइफाइड, उल्टी होने लगना, बहुत सारी इसमें हो जाती है। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि साफ पानी, या आप घर में नल से पिए या आपके पाइपलाइन के द्वारा जो भी सप्लाई के द्वारा जो पानी आ रहा है उसमें हम लोग की प्राथमिकता ही रहती है कि जो भी पानी पी रहे हैं उसमें जो है सो साफ पानी पिए और निरोग रहें और पानी को बचाएं भी।
1: सबसे बड़ी बात यही है कि पानी हम लोग को बचा के चलना भविष्य के लिए भी, क्योंकि दिन प्रतिदिन देखिए ब्रजेश जी जल स्तर नीचे ही चला जा रहा है, घटते ही चला जा रहा है, और जिस तरह से हर घर का एक पानी के बिना तो शायद जीवन, जैसे जल ही जीवन है, जल है तो कल है, तो हमें बताइए कि ये जो पानी है वो किस तरह से हम लोग बचत कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं।
2: देखिए, सबसे पहले कि पानी का जो सोर्स है वो बहुत लिमिटेड है, बरसात में 2-3 महीना बारिश होती है और बह के वो कहीं चली जाती है। जी। तो हम लोग को यही है कि जितने भी अभी नए बिल्डिंग बन रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसमें हम लोग को यही करना है कि ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करना है। आपके घर जब भी पास करा रहे हैं, नक्शा पास करा रहे हैं या बना रहे हैं, तो उसमें एक स्ट्रक्चर बना लीजिए उसमें कि आपको बारिश का पानी जो है सो ग्राउंड के नीचे चला जाए। और आप बता रहे थे कि अभी 300-400 फीट के नीचे पानी नहीं मिल रहा है, ड्राई जोन हो जा रहा है, तो ऐसा है कि इस मतलब क्षेत्र में

0: घर के लेवल से अगर हम बात करेंगे तो उसमें देखते हैं कि आपका कहीं पाइप टूटा हुआ है तो उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, पानी
1: हाँ,
0: बूंद बूंद
1: बिल्कुल
0: टूट टपकते रहता है, उसके बाद हम लोग उसका महत्व तो नहीं समझते हैं। तो ऐसे ऐसे जगह भी जहाँ है जहाँ पानी के लिए बहुत सारी लंबी लाइनें
1: बहुत
0: लगती है और उन लोग को बहुत दूर से पानी लाना
1: बिल्कुल
0: पड़ता है।
1: हाँ
0: तो अभी बहुत देखिए पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि बेमौसम बारिश होती
1: बिल्कुल
0: है,
1: हाँ
0: जिस समय बारिश का मौसम होता है
1: उस
0: उस समय
1: समय
0: धूप आ
1: नहीं
0: जाता
1: हाँ
0: है।
1: हाँ
0: ये जो मौसम का सर्कुलेशन है वो अभी देख रहे हैं कि अलनिनो आ रहा है, तो अभी बारिश हो जा रही है, जब बरसात आएगी तो
1: उस
0: बारिश
1: समय
0: होगी
1: नहीं
0: नहीं,
1: आएंगे
0: तो हम लोग को उसके लिए अभी से सतर्क रहना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: अपने बच्चों को भी बताना पड़ेगा अगले
1: हाँ
0: भविष्य के
1: हाँ
0: लिए कि आपको पानी कैसे संचय करना है। अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो खुला नल ना छोड़ें,
1: हाँ
0: अगर आपके घर में आरओ की सुविधा है तो उसका जो
1: वेस्ट पानी
0: वेस्ट पानी अगर निकल रहा है तो आप छोटा सा किचन गार्डन लगा के रख सकते हैं, उसमें से आप जो वेस्ट वाटर है उसको उसमें डाल सकते हैं, फल सब्जियां लगा सकते हैं, जो भी वेस्ट सब्जी किचन में यूज होता है धोने वगैरह जो भी होता है उसको हम पानी को पाइप के माध्यम से कहीं अपने जो छोटे से जो जमीन रहता है उसमें
1: हाँ
0: आप उसको बहा सकते हैं। बहुत सारा ये है कि बड़े बड़े नगरों और शहरों में होता है कि जो भी खराब पानी बहता है उसको ट्रीट करके फूल पेड़ पौधे में
1: बिल्कुल
0: देने के लिए यूज किया जाता है।
1: हाँ
0: तो लेकिन अभी तो इतना हमारा शहर तो डेवलप नहीं है, उतना
1: बिल्कुल
0: सारा ये हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभी हम लोग यही कर सकते हैं कि अपने घर के जमीन स्तर से घर में आप नल खुला ना छोड़ें, ब्रश या शेविंग करते समय जो है सो
1: वो पानी बहते नहीं
0: वो
1: रहना
0: बहते
1: चाहिए
0: नहीं रहना चाहिए, वो उसको बंद कर दें, और जहाँ भी लीकेज हो रहा है
1: हाँ
0: वहाँ आप लीकेज को तुरंत ठीक करवाएं, बाल्टी के जगह शावर का यूज करें नहाने के
1: बिल्कुल
0: लिए, और बहुत सारी ये है जो आप उसको ठीक कर सकते हैं।
1: हाँ हाँ
0: आदमी को जागरूक होना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: नहीं तो अभी जैसे कि जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से पर LPCD पानी देना बहुत मुश्किल हो गया है,
1: बिल्कुल बहुत
0: सरकार के
1: जरूरी
0: लिए गंभीर चिंता का विषय है। और
1: इसके अलावा ब्रजेश जी और किस क्या क्या उपाय कर सकते हैं ताकि हम ये पानी का बचत कर सकें
0: देखिए जब पानी मूल स्थिति पर आते हैं, जब बारिश होगी ही नहीं तो आप ये क्या कीजिए,
1: पानी
0: उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने घरों में या अपने आसपास कम से कम 4-5 पौधा लगाएं।
1: बिल्कुल
0: पौधा लगाने से क्या हो गया कि आपके जो परिस्थिति है
1: हाँ हाँ
0: पर्यावरण की परिस्थिति वो आपकी सही हो जाएगी और मौसम आपका ठीक रहेगा, उसके हिसाब से आपकी बारिश अच्छी होगी।
1: जी जी
0: तो एक बहुत सा सहायक चीज है कि आपके मतलब क्षेत्र में वनों का होना,
1: बिल्कुल हाँ
0: जहाँ वन होते हैं वहाँ पानी झूम के पानी वर्षा
1: हाँ
0: होती है
1: हाँ
0: ये कहा गया है। तो आप इसमें सभी को जागरूक कर सकते हैं कि पेड़ पौधा लगाएं और उसको बचाएं, कटने से बचें, अगर कट भी रहा है तो उसको उसके हिसाब से उसको
1: और
0: दो
1: पेड़
0: गुना
1: पौधे
0: लगाएं,
1: लगाए हाँ
0: जिससे क्या हो गया कि पर्यावरण मेरा संतुलन रहेगा
1: बिल्कुल हाँ
0: और
1: हाँ
0: संतुलन रहने के कारण अच्छी बारिश होगी, और अच्छी बारिश होगी तो खुद ब खुद
1: वो
0: आप
1: पानी की
0: हाँ
1: समस्या थोड़ा
0: हाँ
1: कम हो जाएगी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने। उम्मीद करते हैं कि सभी जो भी घर में भी रह रहे हैं चाहे गांव घर में भी आप देख लीजिए कि बहुत दूर दूर तक हम देखते हैं कि सब महिला लोग पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाती
0: जी
1: हैं। तो अगर हम लोग इस सब चीज पे ध्यान देंगे तो अगर पानी बचता तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। और जो भी जहाँ भी चापानल वगैरह है अगर वो खराब भी है तो उसको बनवा लें और ताकि उसका पानी यूज कर सकें।
0: जी और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो क्षेत्र है ड्राई जोन हो जा रहे हैं,
1: जी
0: ड्राई
1: जी
0: जोन 300, 400, 500, 600 फीट में जा
1: तब
0: रहे हैं,
1: भी नहीं पानी
0: पानी
1: निकल
0: निकल
1: रहा है
0: रहा है।
1: हाँ
0: तो गांव के साथ साथ शहर में भी हमें जागरूकता अभियान चलाना
1: बहुत
0: चाहिए
1: जरूरी है हाँ
0: कि आप पेड़ पौधा लगाइए, पानी को बचाइए, ऐसे स्लोगन को लिखा के और एजेंसियों के माध्यम

0: से बहुत सारे जो एजेंसी हैं, सरकार के बहुत सारे ये भी हैं, अंग है, उसके माध्यम से हम लोग जागरूक कर सकते हैं कि हमें पानी बचाना है अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं कि पानी बचाना एक आदमी का काम नहीं है,
0: जी
1: सभी लोगों को, चाहे वो परिवार के सभी सदस्य हैं उन्हें, चाहे बाहर के जितने भी खेती खेतिया लोग हैं, वे सभी लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए करें, ताकि पानी का बचत होगा तो खुद का फायदा होगा। पानी के बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, किसी एक दिन अगर लाइन कट जाता है और पानी नहीं रहता है, तो मतलब समझिए कि पानी के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमें पानी की बचत पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और सभी सबसे खासकर बच्चों लोग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई ब्रजेश जी, कि किस तरह से हम लोग पानी बचा सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी ग्रामीण श्रोता भी इस पर ध्यान देंगे, अमल करेंगे। तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आप इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
1: तो देखा, अभी हमने सुन लिए भेंट वार्ता, हर बूंद की कीमत, जल संरक्षण से समृद्ध भविष्य, और एकर बारे में बतावे थलती ब्रजेश कुमार। तो उम्मीद करे ये सभी ग्रामीण श्रोता के ई भेंट वार्ता जरूर बेस लगले होत, और भविष्य में देखा कि उन लोग भी पानी के बचत करके आगे अपन बचत करते, ताकि भविष्य में और लोगों के भी फायदा होते। और उम्मीद करे कि भाई सभी किसान भाई बहन अभी कार्यक्रम में जुड़ल होते। तो आज हम बात करबे कि स्वयं सहायता समूह कैसे ग्रामीण विकास में काम करो है। तो देखा कि स्वयं सहायता समूह है ग्रामीण क्षेत्र में, कुछ महिला 20-25 महिला के एगो समूह बनल रहे हैं, और जिकरा में उन लोग छोटा छोटा बचत कर के जोड़कर, और जरूरतमंद के देखा कि कम ब्याज में ऋण देव हती, ताकि वो लोग स्वरोजगार बन सके और आर्थिक विकास हो सके। एकरा में तू देखा कि आसान तरह से ऋण भी मिल जा है, छोट छोट बचत करे से सब महिला के बैंकिंग के आदत हो जाए, ताकि उन लोग जो फिजूल में जो बिना मतलब के खर्च कर देव हती, वो कम से कम बचत के आदत हो जाए है, तो वो आगे चल के वो काम ही आया है। और एकरा में देखा कि स्वरोजगार और आजीविका के जो साधन है, एकरा में तो ग्रामीण जो ग्रामीण महिला है वो पशुपालन, हस्तशिल्प, छोटा पैमाना में उद्योग हो गया, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, सिलाई, मोमबत्ती बनाना, अचार बनाना, इस सब के तहत तो अपन आर्थिक स्थिति सुधार सको हती। और कौशल प्रशिक्षण के भी सुविधा है, ताकि उन लोग प्रशिक्षण लेकर भी काम के आगे बढ़ा सको हती। और देखा जैसे कि पहले महिला जो चार दीवारी के अंदर रहे हल थी, और खेती बाड़ी के काम और घर के काम में जुटल रहती, अभी समूह के द्वारा देखा कि उन लोग बहुत आगे बढ़ गेले हती, और ओकरा से शिक्षा, स्वास्थ्य, फिर स्वच्छता, और जितना जो छोट छोट लड़कीन और बालिका है उन लोग के भी जागरूक करे में आगे बहुत बड़ा भूमिका है ई संस्था में। और एकर साथे साथे देखा कि जैसन मनरेगा जैसन जो योजना है, ओकरों में ग्रामीण महिला सब भागीदारी लेवो हथी, और आगे सभी ग्रामीण महिला जो काम करे की इच्छुक हथी, वो पैसा के दिक्कत है चाहे किसी तरह के और दिक्कत है, तो उस सब इस समूह के द्वारा उन लोग सुलझाव होती, और साथ ही साथ सभी ग्रामीण महिला के सहायता भी करो हती। तो ई तरी से सभी ग्रामीण महिला, आप देखा खेती बाड़ी में ही नए निर्भर निर्भर हती, उन लोग खेती बाड़ी के साथ साथ घर में गोरू डांगर के पालन पोषण, घर में चेंगा चुटियन, बूढ़ा बुजुर्ग सबके देखभाल करो हती। और साथ में देखा कि जो ग्रामीण सहायता समूह है, एकरा माध्यम से उन लोग आगे भी बढ़ रहल थी, और अपन छोट छोट काम से, उद्योग धंधा से अपन आर्थिक स्थिति भी बढ़ा रहल थी। तो

सभी ग्रामीण शोरता के जरूर बेस लगले होत और फिर अगला बारी खेती बाड़ी कार्यक्रम में फिर से हम साथ जुटती और हमनी ढेर सारा बातचीत के आदान प्रदान करवे। तो देखा बातचीत करते करते हमनी के जो भी बात कर लिए ओकरा में देखा कि समय के पता भी न चलले और हमारा ये खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाए के बेरा भी हो गए। तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से ममता के द अनुमति जोहार प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रादेशिक मुख्य समाचार के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से।

0: दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार वो सुबह 11:50 पर रांची पहुंचेंगे और वहां से सीधे रामगढ़ रवाना होंगे। रामगढ़ स्थित राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में दोपहर 1 बजे आयोजित एक विशेष सेमिनार में वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 46वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय झारखंड के किसानों की आशाओं और ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने लैब टू लैंड पर जोर देते हुए कहा कि कृषि अनुसंधान की सफलता शोध पत्रों से नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव से मापी जानी चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, परमाणु अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। दुमका में आज हुल दिवस के अवसर पर पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रदीप बलमोचू सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर बलमोचू ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य संथाल समाज को हुल आंदोलन के इतिहास, उसके आदर्शों और सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति एवं अवैध तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर साहिबगंज में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष अखिल कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:00 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार, जिसे हम रिले कर रहे थे अपने रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम अंगना।

0: तीन महीने में पैसे डबल,
1: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी,
0: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
2: और कल होगा भी नहीं।
0: तुमने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
3: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
0: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
2: और फास्ट रिटर्न से बच के
0: और फास्ट बॉलिंग से भी।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
6: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
5: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
8: बहनों, आज हम बात करेंगे पहले 1000 दिन माँ और शिशु के स्वास्थ्य की नींव के बारे में। पहले 1000 दिन अर्थात गर्भावस्था का 270 दिन, बच्चे के पहले वर्ष का 365 दिन और दूसरे वर्ष का 365 दिन, हुआ ना कुल मिलाकर 1000 दिन। जीवन के पहले 1000 दिन माँ और शिशु के स्वास्थ्य की सबसे महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है। इसी समय बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और प्रतिरक्षा तंत्र का तेजी से विकास होता है। मनु, जैसे ही किसी महिला को पता चले कि वो गर्भवती है तो सबसे पहले चाहिए कि वो अपना पंजीकरण आंगनबाड़ी केंद्र में करवाए अथवा तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करे। आंगनबाड़ी केंद्र पर ANM सेविका सहिया आपको उचित परामर्श देंगी और चिकित्सकीय लाभ भी। आप चिकित्सक से मिलती हैं तो उनकी सलाह को माने। बहनों, इतना तो हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार लेना चाहिए। एक बहुत जरूरी बात बहनों, हमें इस दौरान नियमित रूप से प्रसव पूर्व जांच करवाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आयरन, फॉलिक एसिड की गोली लेना चाहिए और आवश्यक पोषक तत्व का सेवन करना चाहिए। अपने खाना में हरी साग सब्जी, मौसमी फल, दूध, दही को शामिल करें। अंकुरित मूंग और चना सेवन करने से काफी लाभप्रद होता है। गर्भावस्था के दौरान आपके खान पान पर आपके शिशु का स्वास्थ्य निर्भर करता है। अगर आपका खान पान सही नहीं होगा तो गर्भ में पल रहा शिशु कुपोषित हो जाएगा। बच्चा कुपोषित जन्म ना ले, इसके लिए जरूरी है माँ का खान पान पोषक तत्वों से युक्त हो। बहनों, बच्चे के जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को स्तनपान अवश्य करवाना चाहिए। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तभी तो इसे पहला टीका माना जाता है। बहनों, एक बात

0: का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के जन्म के 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान करवाना है, ऊपर से कुछ भी नहीं देना है, पानी शहद कुछ भी नहीं। 6 माह के उपरांत बच्चे को ऊपरी आहार शुरू करवाना है। हमारे यहाँ तो रिवाज है ना बच्चे के अन्नप्राशन का, हम लोग बहुत खुशी के साथ अन्नप्राशन करते हैं बच्चे को। अब माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का आहार भी शुरू करवाना है। ऊपरी आहार के साथ साथ 2 वर्ष तक बच्चे को स्तनपान जारी रखना चाहिए। एक जरूरी बात बहनों जिसका जिक्र हमने अभी तक नहीं किया वो है बच्चे का नियमित टीकाकरण। बच्चे के जन्म के उपरांत डॉक्टर द्वारा या एएनएम द्वारा मातृ शिशु रक्षा कार्ड दिया जाता है, उसे संभाल कर रखना है क्योंकि उसमें टीकाकरण की अगली तिथि दर्ज होती है। बच्चे के जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर बीसीजी, ओपीबी और हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए। उसके 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह पर बच्चे को ओपीवी 1, 2 और 3, पेंटा 1, 2, 3, रोटा 1, 2, 3 दिलवाना चाहिए। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अगर हम नियमित रूप से बच्चे का टीकाकरण करवाएंगे तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। बहनों इन बातों के अलावा हम सबको साफ सफाई और स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। बच्चे को खाना खिलाने से पहले हाथ अवश्य अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। गंदगी से बच्चे बहुत जल्दी डायरिया से संक्रमित हो जाते हैं और डायरिया भी एक बहुत बड़ा कारण होता है बच्चे में कुपोषण का। बच्चे के साथ साथ जरूरी है माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। प्रसव के पश्चात माँ की देखभाल भी सही से होनी चाहिए। बहनों पहले 1000 दिनों में उचित पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच और स्नेहपूर्ण देखभाल बच्चे के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की मजबूत नींव रखती है तथा भविष्य में कुपोषण और कई बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करती है। बहनों आए दिन हम देखते हैं कि महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। जरूरी है कि महिलाएं अपने अधिकार को जाने और समझें, तभी वो खुद को बचा पाएंगी। इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं एक वार्ता। विषय है घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं के अधिकार। वार्ताकार हैं कुष्मा गुप्ता।
1: प्राचीन काल से आज तक महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का लोहा मनवा चुकी हैं। इन सब के बावजूद हर समय उन पर होने वाले अन्याय, प्रताड़ना, शोषण आदि में कोई कमी नहीं आई है। घरेलू हिंसा दुनिया के लगभग हर समाज में मौजूद है। घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या अल्प विकसित देश की समस्या है बल्कि यह विकसित देशों में भी बहुत प्रचलित है। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते हैं वे एक चिंतनीय स्थिति को रेखांकित करते हैं। हमारे देश में घरों के बंद दरवाजों के पीछे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, शहरों और महानगरों में भी हो रहा है। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक वर्गों, लिंग, नस्ल, आयु समूहों को पार कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए एक विरासत बनती जा रही है। घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। यदि किसी महिला ने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो यह उसके लिए इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद उसकी सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। उस व्यक्ति को स्थिर जीवन शैली की मुख्य धारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं। घरेलू हिंसा की सबसे खतरनाक और दुखद स्थिति है कि जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं, जब वही हमें इस तरह का दुख देते हैं तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला कर लेता है। कई बार इस स्थिति में लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। सिटी स्कैन से पता चलता है कि जिन बच्चों ने घरेलू हिंसा में अपना जीवन बिताया है उनके मस्तिष्क का कॉर्पस कॉलोसम और हिप्पोकैम्पस नामक भाग सिकुड़ जाता है, जिससे उनकी सीखने और समझने की शक्ति प्रभावित हो जाती है। ऐसा भी देखा जाता है कि बालक अपने पिता से गुस्सैल

वह आक्रामक व्यवहार सीखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे बच्चे कमजोर बच्चों तथा जानवरों के साथ हिंसा करते हुए देखे जाते हैं। बालिकाएं नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे प्रायः दब्बू, चुप रहने वाली और परिस्थिति से दूर भागने वाली बन जाती हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि हिंसा की शिकार हुई महिलाएं सामाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेती हैं। घरेलू हिंसा दैनिक रूप से पीड़ा पहुंचाती है और यह उसके रोजमर्रे के कार्यों को प्रभावित करती है, और आम तौर पर इसके जो दुष्परिणाम दिखाई देते हैं उसमें शामिल है पीड़ित महिला का अपना मानसिक संतुलन खो देना, साथ ही उसके आत्मसम्मान और आत्ममूल्यों में कमी आ जाना। घरेलू हिंसा को मुख्यतः चार श्रेणियों में हम बांट सकते हैं, जैसे शारीरिक हिंसा, मौखिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, यौन हिंसा और भावनात्मक हिंसा भी इसमें शामिल हम करते हैं। शारीरिक हिंसा को वैसी हिंसा है जिसमें शरीर को यातना दी जाती है और जिससे जीवन को खतरा होता है, जैसे पिटाई करना, गला घोटना, थप्पड़ मारना और हथियारों का उपयोग करना इत्यादि। मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा वह व्यवहार है जिसका उद्देश्य महिला के आत्मसम्मान को कम करना है और नष्ट करना है, जैसे गाली गलौज करना, अपमान करना तथा हिंसा की धमकी देना। आर्थिक में पैसे और अन्य धन संपदा जिन पर उसका हक है उसे देने से मना कर देना। यौन हिंसा में ऐसे व्यवहार आते हैं जिससे महिला को अपमानित किया जाए और उसका सील भंग हो जाता है तो उसे व्यक्तिगत चोट भी पहुंचे। आज हम महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं इस बात की जानकारी साझा करेंगे। अगर हम महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहें तो बहुत हद तक उन पर हो रहे अत्याचार से निपटा जा सकता है। जानकारी के अभाव में महिलाओं को अत्याचार सहना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं मालूम होने की वजह से उनके द्वारा गलत कदम उठ जाते हैं जिसका नुकसान उन्हें स्वयं पड़ जाता है। महिलाओं के सहयोग के बिना घर का विकास असंभव है। काम चाहे घर का हो या बाहर का, महिलाएं सभी कार्य में अपनी सहभागिता रखती हैं। एक महिला एक साथ कई रिश्तों को निभाती है, बेटी, बहन, सास बहू, ननद भाभी, पत्नी, माँ, सभी रिश्तों को एक सूत्र में पिरोकर चलती है। वो हमेशा प्रयास करती है कि सारे रिश्ते प्रेम पूर्वक सही ढंग से चले। अपने रिश्तों को बचाने के लिए महिलाओं में समर्पण की भावना रहती थी। धीरे धीरे इन भावनाओं में परिवर्तन शुरू हो गया, लोगों में अपने पराए की भावना आने लगी और बेटी अपनी है, बहू पराई, तो दोनों में व्यवहार भी अलग अलग दिखने लगे। सास और बहू के संबंध तथा ननद और भाभी के संबंध में प्रेम की जगह द्वेष दिखाई देने लगे। ये प्यारे रिश्ते अब एक दूसरे में कमी ढूंढने लगे तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने का अवसर तलाशने लगे। छोटी छोटी गलतियों को भी बहुत महत्व दिया जाने लगा। आपस की सारे प्रेम नफरत में बदल गए और घरेलू हिंसा की शुरुआत हो गई। जिस घर में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, घरेलू हिंसा की बढ़ोतरी के कारण आज उसी घर में असुरक्षित हो गई। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई सख्त नियम बनाए हैं, जिसमें सबसे शुरुआती कानून है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जिसमें दहेज लेन देन को अपराध बना दिया गया। 1986 में दो नई धारा 498A तथा 304B को जोड़कर दहेज प्रतिषेध अधिनियम को और अधिक मजबूत बनाया गया, जिसके तहत किसी भी विवाहित महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना है। इस अधिनियम के तहत महिलाएं स्वयं पर हो रही अत्याचारों के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है और इसके लिए उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है।

0: यदि किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध उसके पैसे, शेयर्स या बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वह इस कानून का इस्तेमाल करके इसे रोक सकती है। शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय को इस कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती है जिसमें वह रह रही हैं। इस कानून के तहत पीड़ित महिला किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती हैं, जैसे संरक्षण का आदेश पा सकती हैं, आर्थिक राहत के लिए वो अपना आवेदन दे सकती हैं, निवास का आदेश पा सकती हैं, मुआवजे का आदेश पा सकती हैं। विवाहित होने की दशा में महिला को अपने बच्चे की कस्टडी तथा मुआवजा मांगने का भी अधिकार है। सरकार ने वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएं प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से शिकार महिलाओं की सहायता के लिए चिकित्सीय, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुंच को सुगम और सुनिश्चित करता है। वन स्टॉप सेंटर में हिंसा से पीड़ित महिला अपने बच्चे के साथ अस्थायी रूप से रह सकती हैं। लंबे वक्त के लिए यदि आश्रय की जरूरत हो तो उन्हें स्वाधार गृह आदि में भेजने की व्यवस्था भी की जा सकती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वन स्टॉप सेंटर स्कीम के तहत संचालित ऐसे हेल्पलाइन नंबर 181 तथा 1090 के साथ काम करती है। सेंटर महिला को FIR दर्ज कराने में भी मदद करती है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यदि हम सही मायने में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो वक्त आ चुका है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक तौर पर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए तथा हमें पुरुषों को न केवल समस्या का एक कारण बल्कि उन्हें इस मसले के समाधान के अविभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा।
1: अभी आप सुन रही थी कुष्मा गुप्ता से वार्ता, विषय था घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं के अधिकार। और आइए अब सुनते हैं एक गाना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंगना FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म दो रास्ते से। आवाज है लता मंगेशकर की।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: मोहब्बत इसको कहते हैं। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है खयाम का।

तीन देवियां सुनते हैं इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एस डी बर्मन।

नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। सुनते हैं इस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज है। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत मदन मोहन का है।

आन मिलो सजना सुनते हैं। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आन मिलो सजना। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही क्षण पश्चात आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कृषि अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाने पर दिया जोर। कहा, शोध की सफलता किसानों की आय बढ़ाने से तय होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रमाण पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई। वर्ष 2024 तक की सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। दुमका में कांग्रेस की ओर से निकाली गई हुल दिवस पदयात्रा। संथाल समाज को हुल आंदोलन के इतिहास, आदर्शों और अधिकारों से जोड़ने पर जोर। और CISCE जोनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित जीते 8 पदक। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 46वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय झारखंड के किसानों की आशाओं और ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने लैब टू लैंड पर जोर देते हुए कहा कि कृषि अनुसंधान की सफलता शोध पत्रों से नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव से मापी जानी चाहिए। राज्यपाल ने बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और लाख उत्पादन में संभावनाओं का जिक्र करते हुए छात्रों से जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनने का आह्वान किया और विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती तक देश के अग्रणी कृषि संस्थानों में शामिल होगा। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में राज्य सरकार एक और कदम बढ़ाने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जून को रांची के टाना भगत स्टेडियम खेलगांव में आयोजित समारोह में 1042 चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कल एक दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगे। रामगढ़ स्थित राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में दोपहर 1 बजे आयोजित एक विशेष सेमिनार में वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सेमिनार का विषय आर्थिक असमानता और बेरोजगारी के संदर्भ में डॉ भीमराव अम्बेडकर का समग्र दृष्टिकोण रखा गया है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और समावेशी विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, परमाणु अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है। पहले इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित थी। परिषद के अनुसार ये सुविधा प्रारंभ से लेकर वर्ष 2024 तक आयोजित जेएसी की सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगी। छात्र छात्राएं पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मूल प्रमाण पत्र सहित अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि तथा अन्य स्वीकृत त्रुटियों के सुधार के लिए निर्धारित अवधि तक आवेदन कर सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका में आज आदिवासी कांग्रेस कमेटी की ओर से हुल दिवस पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में कांग्रेस नेता डॉ. प्रदीप बलमुचू सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर डॉ. बलमुचू ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य संथाल समाज को हुल आंदोलन के इतिहास, उसके आदर्शों और सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के नमस्कार केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक और विधिवत पूजन किया। पूजा के बाद श्री सिंह ने देश में अमन चैन, किसानों और मजदूरों की समृद्धि तथा बिहार झारखंड सहित पूरे देश की खुशहाली की कामना की। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी के पास देर रात एक सवारी वाहन और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को रिम्स रांची रेफर किया गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क जाम रही, जिसे प्रशासन के आश्वासन के बाद हटाया गया। आजसू नेता पीयूष चौधरी ने कहा कि इस स्थान पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं।
3: लगातार तीसरा दिन हादसा हो रहा है। कल 4 लोग मरे थे और लगातार एक एक दिन छोड़ के यहाँ पे हादसा होता आ रहा है। हमेशा से हमने प्रशासन को, ने यहाँ के बालों गांव के पब्लिक ने प्रशासन को कोऑपरेट किया है कि भाई रास्ता ना रोका जाए, निकला जाए। लेकिन
0: मुहर्रम के अवसर पर कल रांची जिले में ताजिया और अखाड़ा जुलूसों के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजेंद्र के निर्देशानुसार केवल पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अत्यंत आवश्यक होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देकर कराई जा सकेंगी। प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। झारखंड में आज मौसम आंशिक रूप से धूप वाला और उमस भरा रहा। हालांकि राजधानी रांची सहित कुछ इलाकों में आंधी के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 28 जून से पूरे झारखंड में मॉनसून फिर से पूरी तरह सक्रिय होने का पूर्वानुमान है, जिससे कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स स्कूल डोरंडा में आयोजित CISCE जोनल कराटे चैंपियनशिप में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण सहित कुल 8 पदक जीते। लोरेटो कॉन्वेंट की मारिया

0: लवलीन खेस, वृष्टि मोनिका किरकेट्टा और शाइनी शिमोना टुपो ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं बिशप वेस्टकॉट नामकुम की मिस्टी कुमारी और बिशप स्कूल बहुबाजार के प्रीत सोनी ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा ने कहा कि अब खिलाड़ियों को बिहार में होने वाली रीजनल कराटे प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कृषि अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाने पर दिया जोर। कहा, शोध की सफलता किसानों की आय बढ़ाने से तय होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रमाण पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई। वर्ष 2024 तक की सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। दुमका में कांग्रेस की ओर से निकाली गई हुल दिवस पदयात्रा। संथाल समाज को हुल आंदोलन के इतिहास, आदर्शों और अधिकारों से जोड़ने पर जोर। और सीआईएससी जोनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित जीते 8 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के तत्वाधान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिरसा नगर किफायती आवास परियोजना के लाभुकों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 322 लाभुकों को मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद सांसद विद्युत वरण महतो एवं जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू के हाथों नए आवास की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया गया। इस दौरान विद्युत वरण महतो ने लाभुकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन और पक्की छत उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
2: आज एक ऐतिहासिक दिन में ऐतिहासिक समय में लगभग 300 से ज्यादा लाभुकों को आज मकान का चाबी दिया जा रहा, इसलिए देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को और राज्य सरकार को सभी को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
1: विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर जमशेदपुर प्रधान डाकघर परिसर में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। डाक विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में डाक कर्मियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। डाक विभाग की ओर से नियमित रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ डाक अधीक्षक उदय भान सिंह ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का माध्यम है।
3: इसका थीम है इस वर्ष का 2026 का मानवता की एक बूंद जिंदगियां बचाए। तो अगर हमारे डाक परिवार के स्टाफ से ग्रामीण डाक सेवकों जो रक्तदान करेंगे उनसे अगर किसी की जिंदगी बचती है तो इससे बड़ा दिन मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता है।
1: जमशेदपुर के साक्षी स्थित बंगाल क्लब की आचार्य नंदलाल बोस कला दुर्गा में 3 दिवसीय सीमूल 26 चित्रकला एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें 40 चयनित कलाकारों की चित्रकला और मूर्तिकला कृतियां प्रदर्शित की गई, जिनमें प्रकृति, समाज, संस्कृति और मानवीय भावनाओं को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। इस दौरान आयोजक समिति के सदस्य शुभेंदु विश्वास ने बताया कि
4: हमारी ये जो एग्जीबिशन आप देख रहे हैं ये आर्टिस्ट फोरम की तरफ से एक वर्कशॉप किया गया था साक्षी हाई स्कूल में 8 तारीख और 9 जून को, जिसमें 40 कलाकारों ने भाग लिया था। उसमें 3 स्कल्प्टर भी थे जिन्होंने अपना काम किया है और उसी का जो काम हुआ है वही हम दर्शक के लिए एग्जिबिट किया जा रहा है। अभी हमारे पास 38 पेंटिंग्स है और 3 स्कल्प्चर है। एक जनता के सामने में अपना प्रोडक्ट को लेके नहीं आएंगे, क्रिएटिव काम को लेके नहीं आएंगे, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते, अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर सकते हैं।
1: जमशेदपुर में नशा मुक्त भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत जिला मुख्यालय से की गई। इस अवसर पर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश देगा। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप सुन रहे थे खबरों पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। आइए सुनते हैं आशा फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

आई दिन बहार के सुनते हैं इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम खेलेंगे शान से। संकलन एवं वाचन माणिक चक्रवर्ती का है, प्रस्तुत करता है राजीव कुमार, संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।
1: कहीं दौड़ती सांसें हैं, कहीं उड़ते हुए सपने हैं, कहीं मिट्टी से लथपथ जर्सी है, तो कहीं तिरंगे को छू लेने की जिद है।
2: ये सिर्फ खेल नहीं, ये जुनून है, ये पहचान है, ये वो आग है जो खिलाड़ियों के सीने में जलती है और इतिहास बनाती है।
1: और जब यही जुनून मैदान में उतरता है तो रिकॉर्ड बनते हैं, तालियां गूंजती हैं और एक साधारण खिलाड़ी असाधारण कहानी बन जाता है।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव कुमार
1: और मैं हूं माणिक चक्रवर्ती। खेल गतिविधियों के साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से में आपका स्वागत है।
0: अगले कुछ मिनटों में हम आपको मिलवाएंगे उन चेहरों से जिनकी मेहनत मैदान पर दिखाई देती है, सुनाएंगे संघर्ष और सफलता की ऐसी कहानियाँ जो आपके भीतर भी एक नई ऊर्जा जगा देगी।
1: तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब बात होगी हौसलों की, जुनून की, संघर्ष की और उन सपनों की जो मैदान में चमकता हुआ पसीना बनकर बहता है।
0: शुरू करते हैं आज का अंक,
1: खेलेंगे शान से।
2: जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।
0: सबसे पहले चलते हैं दोस्तों मैदान की ओर और सुनते हैं
1: ग्राउंड रिपोर्ट।
0: आज की ग्राउंड रिपोर्ट आधारित है शूटिंग प्रतियोगिता पर। खिलाड़ियों 20 जून 2026 से 23 जून तक स्थानीय हजारीबाग स्टेडियम में 4 दिवसीय हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट सुनील सिन्हा मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक राइफलों संग साइक्रो शूटर्स ने इसमें हिस्सा लिया। झारखंड के पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह समापन दिवस पर हजारीबाग पहुंचे। इसके साथ ही कई गणमान्य लोगों और वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई। अंतिम दिवस की ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने पहुंचे हमारे सहयोगी माणिक चक्रवर्ती।
3: एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में आज ये ऐतिहासिक द्वितीय हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट सुनील सिन्हा शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के समापन पुरस्कार वितरण समारोह में आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस मंच पर खड़े होकर जब मैं सामने बैठे इन युवा चेहरों देखता हूँ तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह चैंपियनशिप सिर्फ 4 दिनों की प्रतियोगिता ही नहीं है, यहाँ हमारे स्वर्गीय सुनील सिन्हा जी के उस अधूरे सपने को हकीकत में बदलने का महायज्ञ है जो उन्होंने हजारीबाग के खेल जगत के लिए देखा था। यह हमारी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। टीम को सैल्यूट। इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए हजारीबाग एसोसिएशन की पूरी टीम को और हमारी पूरी कोर टीम को सैल्यूट करता हूँ। आप लोगों ने दिन रात एक करके इस आयोजन को जो सफलता दी है उसके लिए

0: साबित कर दिया है कि हमारा एसोसिएशन सिर्फ कागजों पर ही नहीं बल्कि मैदान पर इतिहास रचने के लिए भी जानी जाएगी। हमारी एसोसिएशन आपके साथ हर कदम पर खड़ी है। आपकी इस मेहनत को हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक लेकर जाएंगे, यह मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।
1: मैं आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट का नाम सुनील सिन्हा शूटिंग चैंपियनशिप रखा गया है। सुनील सिन्हा हजारीबाग के जाने माने समाज सेवी थे और डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन ने उनके नाम पे इस टूर्नामेंट को करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उनके कार्यों को याद किया। एक बार तालियां हो जानी चाहिए उनके लिए। मैं अपने सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि ये जो टूर्नामेंट है स्वर्गीय सुनील सिन्हा जी के नाम पर है, तो उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करें। यहाँ पे मौजूद है उनके पुत्र संगीत सोनल, उनसे भी अनुरोध होगा कि वो मंच पर आ जाए। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि झारखंड राज्य के पूर्व डीजीपी आदरणीय अजय कुमार सिंह जी से बच्चों का उत्साह बढ़ाए। दो शब्द कहे
2: आपने, सीमित संसाधनों में इतना अच्छा आयोजन किया है। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन करते रहते हैं, चाहे साधन जो है वो कम हो, लेकिन बच्चों की जो प्रतिभा है उसको हमेशा आगे बढ़ाते रहे हैं और भविष्य में भी उम्मीद है कि इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है, प्रसन्नता की बात है और सम्मान का विषय है। मित्रों, शूटिंग जो है ये एक बहुत ही विशिष्ट खेल है। पहले ये कुछ ही दायरों में, कुछ ही लोगों में, कुछ ही बच्चों तक सीमित था, लेकिन आज की डेट में हजारीबाग जैसे क्षेत्र में भी इसमें काफी बच्चे, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे मेडल्स वगैरह ले रहे हैं। इसमें उम्मीद है कि अब हजारीबाग से निकल करके आगे जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होने वाली है उसमें भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे। प्रिय खिलाड़ियों, जिन लोगों ने मेडल प्राप्त किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि ये आपकी मेहनत का, आपके समय का और आपके जो मेहनत है और आपके पूरे परिवार के लोग हैं या आपके जो कोच हैं उनकी मेहनत का परिणाम है कि आप लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं ये आशा करता हूं अंत में कि ये जो आयोजन आज हुआ है, इस सफल आयोजन के बाद आने वाले समय में भी इसी से अच्छा और इससे बेहतर प्रदर्शन होता रहेगा और आज के जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी पदक विजेता हैं, उनको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जोहार, जय।
1: आस्ती सिंह फर्स्ट, प्रतीक सिंह सेकंड और सौर्य सिंह थर्ड। ये 50 मीटर .22 ओपन साइट प्रोन राइफल यूथ मेन, 50 मीटर .22 ओपन साइट प्रोन राइफल जूनियर मेन विजेता अर्पित सिंघानिया, सेकंड आए हैं शिवराज सिंह और थर्ड आए राइफल जूनियर।
3: और खेलेंगे शान से के श्रोताओं, ये तीनों विजेता जो है इस वक्त मेरे पास मौजूद है, आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं खेलेंगे शान से की ओर से। कहां से आते हैं ये बताइए आस्ती जी। पहले
4: जतराइट खोरी जाते हैं, मेरा गांव में मनहरी।
3: तो गांव में शूटिंग का ये जो शौक आपके अंदर आया, ये कब से आया है?
4: हम हजारीबाग पढ़ने आए तब पता चला, एनसीसी की तरफ से हम आए थे, अच्छा पता चला तो फिर आए।
3: कितने समय से इसमें लगे हुए हैं?
4: 2.5 साल से।
3: आज पहला पुरस्कार मिला आपको?
4: बहुत पुरस्कार,
3: इससे पहले भी बहुत सारे पुरस्कार।
4: मेहनत करे, अच्छा से करे, सबका होगा, सबका मेडल लगेगा।
5: प्रतीक राज सिंह,
3: प्रतीक राज आपको दूसरा पुरस्कार मिला।
4: हाँ,
3: तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। शूटिंग के लिए क्या सबसे जरूरी होता है?
5: इक्विपमेंट वगैरह जो होता है सब बहुत जरूरी होता है।
3: ऐसे एसोसिएशन से जुड़ करके क्या फायदा होता है कि वो इक्विपमेंट मिलता है?
5: पूरा सपोर्ट मिलता है एसोसिएशन की तरफ से। इस बार हमें बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत सपोर्ट मिला डिस्ट्रिक्ट के थ्रू हम लोग को। अभी नमो मैच हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, उसमें भी मेडल लेना।
3: आप अपना नाम बताएं।
6: शौर्य जुल्लू पर, पिछला बार भी खेले,
3: पिछले बार भी। पिछले बार क्या प्राप्त किया?
6: सिल्वर था एयर पिस्टल।
3: थोड़ा सा एक कदम अब आगे आकर के तृतीय पुरस्कार, कैसा महसूस कर रहे हैं?
6: अच्छा,
3: शुभकामनाएं भविष्य की शूटिंग रेंज में और आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया हमसे बात।
1: प्रतीक थर्ड फर्स्ट प्राइज, ईशान सेकंड, प्रतीक थर्ड, मंच पर आ गए।
3: एक तो आप पत्रकार हैं, समाज से जुड़ी हुई निष्ठा जो है, काम जो है वो आप करते हैं, ऐसे में खेल से संबंधित और वो भी शूटिंग रेंज, इसमें आपका किस तरह से रुझान हुआ? हमारे खेलेंगे शान से के श्रोताओं को बताइए।
7: शूटिंग के प्रति शुरू से झुकाव रहा है मेरा, और शुरू में कुछ शॉट भी चलाते रहे हैं, लेकिन जब पदाधिकारी के रूप में खेल को बढ़ावा देने का समय आया तो मैंने सेक्रेटरी का पद संभाल लिया।
3: क्या बात।
7: और उसके बाद इस खेल को हजारीबाग में आज यह खेल जो है लड़कियों में बहुत पॉपुलर है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मान लीजिए हजारीबाग जो राइफल एसोसिएशन का जो शूटिंग सेंटर है उसमें आज बच्चे 100 बच्चे सीख रहे हैं, तो उसमें 70 बच्चे लड़कियां। नेशनल NRAI जो है हम लोग का संगठन है, वहाँ भी आपकी पहचान बन गई। हजारीबाग जैसे छोटे से जगह में आप प्लेयर को भेज रहे हैं नेशनल स्तर पर, तो आने वाले समय में अब देखिए यह खेल का बढ़ता दायरा है। जो आज सांसद को भी घोषणा करना पड़ा कि हम 1 करोड़ रुपए आपको देंगे, आके यहाँ घोषणा किए, शूटिंग भी किए, मुन्ना सिंह भी आए, सदर विधायक भी आए, तो हर को लग रहा है कि हजारीबाग जो प्रमंडलीय मुख्यालय है यहाँ पर शूटिंग का एक हब होना चाहिए। तो हजारीबाग

0: एक लड़की है रिद्धि गुप्ता, उसके फादर सब्जी बेचते हैं। वो लड़की जो है संघर्ष करते हुए आज नेशनल शूटर है और प्रशिक्षक है, प्रशिक्षक का भी कोर्स पूरा किया है। तो उसकी प्रतिभा हम लोग देख करके एसोसिएशन उसको मदद कर रहा है। ऐसे कई बच्चे हैं जिसको हम लोग मदद कर रहे हैं। निःशुल्क निस्वार्थ सेवा है और इस बात की बहुत खुशी होती है कि बच्चे हमारे बढ़ रहे हैं। मैं नीलेंदु जयप्रिया,
1: तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चार दिवसीय शूटिंग रेंज महोत्सव के लिए।
0: थैंक यू।
2: मैं राकेश रंजन, अध्यक्ष हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और बस यही दुआ करता हूं कि यहां के बच्चे देश और ओलंपिक में भी नाम करें, ताकि हमारे जिला का नाम, हमारे राज्य का नाम सर्वोपरि से लोग गर्व से ले सके। हजारीबाग शूटिंग की ये शुरुआत जो हुई थी 2007 में हुई थी, जिस समय ये पदस्थापित है यहाँ पर एज ए DIG। उस समय हम लोग 2-3 आदमी को बुलाए थे, ये उसमें सुनील सिन्हा भी साथ थे, ये फाउंडर हम लोग के। यही एम हम लोग का यही है कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के जिले के बच्चे जो है आगे बढ़े, हम लोग का यही है। धन्यवाद,
1: बहुत धन्यवाद,
3: बहुत धन्यवाद।
4: मेरा नाम ईशान प्रतीक है, मैं हजारीबाग शूटिंग राइफल एसोसिएशन से रिलेट करता हूँ। मैं 3 सिल्वर मेडल और 1 गोल्ड मेडल और 1 ट्रॉफी देता हूँ।
1: क्या बात। तो आपकी उम्र कितनी?
4: 12 इयर्स।
1: 12 इयर्स है। कब से शूटिंग के प्रति आपका रुझान हुआ?
4: 3 इयर्स।
1: 3 इयर्स से आप लगे हुए हैं। और इसमें परिवार के लोग जो है, पापा है, मम्मी है, उनका क्या सहयोग है?
4: अच्छे से करो और आगे बढ़ो, बहुत अच्छे फील हो। 10 मीटर था और ओपन साइड था।
1: ओपन साइड था। तो इसे सीखने के लिए क्या करते थे आप इससे पहले?
4: इससे मतलब दिन लगा के प्रैक्टिस करना होता है इसमें।
1: नेशनल लेवल पर आप खेले? तो नेशनल लेवल में कहाँ पर गए थे बेटा?
4: भोपाल।
1: भोपाल गए थे। तो वहाँ भी आपने जीत हासिल की थी, प्रथम पुरस्कार। क्या बात। तो आज हम एक छोटे से नन्हे से चैंपियन से बात कर रहे हैं, खेलेंगे शान से के श्रोताओं इस ग्राउंड रिपोर्ट के आखिरी सेशन में, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
5: मेरा नाम सलोनी विजय है।
1: सलोनी, तो क्या क्या आपको मिला है पहले हमारे खिलाड़ियों को?
5: 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल और 1 ओवरऑल ऑलराउंडर 10 मीटर।
1: 10 मीटर में आपने जीता। आप कहाँ से आती हैं?
5: साकेतपुरी।
1: साकेतपुरी से।
5: 1 साल से।
1: अब आगे का क्या करना है इस एसोसिएशन के साथ रहते हुए?
5: और आगे नेशनल तक जाना है।
1: नेशनल तक जाना है। और हमारे हजारीबाग में जितनी भी बेटियों ने इससे पूर्व नाम कमाया है खिलाड़ी के रूप में, आपको भी नाम कमाना है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं देते हैं।
5: थैंक यू। मेरा नाम सौम्या विजय है।
1: स्वागत है आपका खेल के शान से में। सौम्या विजय ने क्या हासिल किया आज?
5: मैंने आज ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल भी हासिल किया है और 1 ऑल ओवर का।
1: कब से सीख रही है?
5: 1 साल।
1: इसी एसोसिएशन से जुड़ी?
5: हाँ, बस एक बार हम देखे थे, उसके बाद हमको लगा कि हमको सीखना चाहिए, तो हम आ गए
1: और ये चल रही है।
5: हाँ।
1: अब माता पिता का इसमें सहयोग कैसा रहता है, घर से क्या सहयोग?
5: बहुत अच्छा सहयोग रहता है, वो हमेशा हमें प्रेरित करते रहते हैं कि हमें खेलना चाहिए आगे।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप और भी सिल्वर मेडल्स हासिल करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू। मेरा नाम साक्षी सिन्हा।
1: साक्षी सिन्हा, स्वागत आपका। क्या इसमें रोल रहा है ये 4 दिवसीय शूटिंग चैंपियनशिप में?
5: मेरा इसमें सिल्वर मेडल मिला है 10 मीटर शूटिंग रेंज में,
1: शुभकामनाएं।
5: पिस्टल शूटिंग में। थैंक यू।
1: तो कब से कर रही है आप ये?
5: हम ये पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं।
1: 6-7 साल से।
5: हाँ, पहले तो बहुत सारे मैचेस खेले लेकिन ऐसा अप्रोप्रिएट स्कोर नहीं आया जिसमें हम कुछ और आगे लेवल पे जाए, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे सारे जितने भी मेट्स है, शूटिंग मेट्स है, सब बहुत सपोर्टिव है। यहाँ की कोच भी है, रिद्धि है और रोहित भी है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। ये लोग हर एक तरीके से गाइड करते हैं कि कैसे खेलना है, कैसे मैनेज करना है, डाइट कैसे लेना है, हर एक चीज A to Z सब कुछ बताते हैं ये लोग।
1: आप सबको शुभकामनाएं। खेलेंगे शान से,
6: जीतेंगे शान से।
1: खेलेंगे शान से,
6: जीतेंगे शान से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। मैदान की मिट्टी से निकली ये आवाजें बताती हैं कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, जुनून भी है।
7: हर पदक के पीछे वर्षों की मेहनत छुपी होती है और हर हार एक नई सीख लेकर आती है।
1: और अब खिलाड़ियों का अगला सेगमेंट सुनिए जो है आज का खेल मंत्र।
7: जीतने से पहले खुद पर विश्वास जीतना जरूरी है।
1: अभ्यास वह चाबी है जो प्रतिभा के हर बंद दरवाजे को खोल देती है।
7: खिलाड़ी वही है जो दबाव को अवसर में बदल दे।
1: जो खिलाड़ी सीखना बंद कर देता है वह आगे भी बढ़ना बंद कर देता है। तो ये था आज का खेल मंत्र।
7: दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले सेगमेंट की ओर जो सीनियर खिलाड़ियों के लिए है,
1: और वो है सुनो खिलाड़ियों।
7: सुनो खिलाड़ियों, आपका अनुभव युवा खिलाड़ियों की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: सुनो खिलाड़ियों, खेल छोड़िए मत, अपनी सीख अगली पीढ़ी तक पहुंचाइए।
7: सुनो खिलाड़ियों, मैदान से दूरी हो सकती है खेल भावना से नहीं, एक वरिष्ठ खिलाड़ी पूरे खेल परिवेश को दिशा दे सकता है। आपका मार्गदर्शन कई सपनों को ऊंची उड़ान दे सकता है। सुनो खिलाड़ियों, ये सुनने आइएगा अगले शुक्रवार।

0: और अब समय हुआ हमारे अगले सेगमेंट का जो है
1: खेल टिप्स।
0: अभ्यास से पहले वार्म अप और बाद में कूल डाउन जरूर करें।
2: पर्याप्त पानी पीना और संतुलित भोजन करना खिलाड़ी की पहली जरूरत है जो आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाता है।
0: नींद भी अभ्यास जितनी ही महत्वपूर्ण है, अपनी प्रगति का नियमित आकलन करते रहें।
2: तो ये था आज का खेल टिप्स। और दोस्तों अब वक्त है खेल जगत की ताजा हलचलों और महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालने का। सुनिए खेल अपडेट्स।
0: खेल अपडेट्स में सबसे पहले वर्ष 2026-27 सुब्रतो कप लिटिल चैंप फुटबॉल टूर्नामेंट मांडू में प्राथमिक विद्यालय भूतही की टीम फाइनल में पहुंचकर रनर अप रही। इधर हजारीबाग की प्रतिभाशाली तीरंदाज सपना कुमारी ने हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का मान बढ़ा दिया। और अब महिला हॉकी से जुड़ी खबर। भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन महिला नेशंस कप का खिताब जीत लिया। फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। और अब फुटबॉल से जुड़ी खबर। आज फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप चरण के महत्वपूर्ण मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिनमें स्पेन बनाम उरुग्वे और नॉर्वे बनाम फ्रांस प्रमुख है। मेसी ने विश्व कप में खेलते हुए सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट मैच खेलने का नया कीर्तिमान और एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम दर्ज की, जिससे उनका रिकॉर्ड और भी मजबूत हो गया। महिला 2020 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखी हैं, जबकि शेफाली वर्मा ने शानदार अर्धशतक जड़कर 2020 विश्व कप में 500 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी बना लिया। सफर की धूप से घबराकर घर में बैठने वालों, मंजिलें कभी किसी के दरवाजे नहीं आया करती। मैदान भी उन्हीं का स्वागत करता है जो हार से नहीं कोशिश छोड़ देने से डरते हैं।
2: हौसलों के चिराग जलाए रखिए, मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहिए। जीत एक दिन कदम चूमेगी आपके, बस इरादों को सदा मजबूत बनाए रखिए। तो खेलिए पूरे मन से
0: और खेलिए पूरे सम्मान से, क्योंकि खिलाड़ी वही
1: जो खेले शान से।
3: हार के बैठना नहीं, जीत के दिखाना है तुझे।
2: और आज के इस अंक से अब मुझे राजीव कुमार
0: और मुझे माणिक चक्रवर्ती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

खेलेंगे सार से। अभी आप सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित ये कार्यक्रम। संकलन एवं वाचन माणिक चक्रवर्ती का था। प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक विक्रम कुमार रंजन। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म आम्रपाली से। आवाज है लता मंगेशकर की।

आ पाए बहार आई। सुनते हैं इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

आपकी चाहत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को माधवी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हाजिर हम आपके पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ। करते हैं शुरुआत इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है अब्दुल्ला, गायक कलाकार मोहम्मद रफी। पसंद आप सभी श्रोताओं की। चेपा कला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, साबिया ठाकुर, तिलेश्वरी भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश कुमार ठाकुर, अनुराधा, रुक्मिणी, प्रियंका और दीपिका। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, अबाबू रेयांस ठाकुर। खिरगांव मालीटोला से कल्लू मालाकार, नवनीत मालाकार, अरविंद मालाकार, आदर्श मालाकार और अनिकेत मालाकार। कानी बाजार से संगीता कुमारी, नीता कुमारी, उषा कुमारी, प्रियंका कुमारी और उनके बहुत सारे दोस्त। न्यू एरिया दूसरी गली से जसोदा देवी, संतोष, रवि, बबलू और संजय। जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातमा, कनीस फातमा और शहनाज फातमा। सीसीएल बरकाकाना से रविन्द्र वर्मा, अमन वर्मा, आरती वर्मा और वसी वर्मा, रिया वर्मा, परी, कोको, चारू और आरके वर्मा।

आइए सुनते हैं अभिलाषा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आर डी बर्मन का है। पसंद आप सभी श्रोताओं की। पंचमंदी रोड हजारीबाग से कलाम अहमद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, एहसान अहमद आरजू, हबीबा खातून आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा प्रवीण आरजू। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल तार, शाहिन सुल्ताना, सोनू तशनीम और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। माली टोला खिरगांव से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, अनिकेत भगत, ऋषि और राहुल। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, बेबी आरजू जाजौरिया। रेलवे स्टेशन हजारीबाग के पास से शमीम अहमद, सगुप्ता परवीन, नूरजहां बेगम, तहसीन बानो, खलील अहमद, एहसान अहमद, आरजू परवीन और नसीम अहमद। औरंगाबाद से आप हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। सुनते हैं इन सभी की पसंद पर अभिलाषा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

असली नकली सुनते हैं इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास लिखकर भेजी है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, अर्जुनैद अब्बासी। दिल्ली शहर मुरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार।

प्रीतिलय से आप हैं जगन्नाथ प्रसाद साहू टिमोटाड़ हजारीबाग से श्रुति राधिका मिली मधु विनीता रघु आशीर्वाद गोपाल भैरव जी और मधुसूदन कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारिका और वंश बत्ता छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा।

की परछाइयां। सुनते हैं इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। पसंद आप सभी श्रोताओं की डम्बाडी हरली बड़कागांव से उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, शमी, अपराजिता, टुक्कू, अपूर्व और उनका पूरा परिवार, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, बाबा रेडियो श्रोता संघ हजारीबाग से महावीर लाल चौरसिया, मेन रोड बड़कागांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार और उनके मम्मी पापा।

आइए सुनते हैं ब्रह्मचारी फिल्म का गाना। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज है। पसंद आप सभी श्रोताओं की। अहमदाबाद से जतिन मेहता, भालचंद बटके, फुलबा मेहता, विकास बटके और नीलेश बटके। नूरा हजारीबाग से बिहारी महतो, रविंद्र कुमार, अरविंद कुमार, निखिल कुमार, बालेश्वर प्रसाद, उमेश प्रसाद कुशवाहा, बॉबी कुमार, डब्लू प्रसाद। हजारीबाग पतरातु से वेसिल खालखो, सेसिल खालखो, मधु, रितु, रचना मितु, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, सचिन, नदीम, ललिता और उनका पूरा परिवार। दरियापुर अमरावती से यश चौहान, अंश चौहान, संदीप चौहान और माधवी चौहान। नया टोला भिकनपुर भागलपुर से गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास पासवान, नितिन पासवान और मनोज पासवान।

पुराने श्रोता संघ मगनपुर से अमजद अली अब्बास आलम, नाज मंचिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन बेगम इसरत अकरम, अरहान बाबू हुमैरा नाज सुमैरा नाज अबिया नाज साजिया साहिन नाज नूरी नाज बच्चू सैख और चीना सैख, भाटापारा से प्रमोद साहू देव कुमार साहू नेत्राम साहू और भवेन्द्र

भूपेंद्र साहू, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, श्रीमान मोल धर्मपाल, वीर सिंह, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण और रमेश मिगलानी। सुनते इन सभी की पसंद पर अनुपमा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

आई सुनते हैं होटल फिल्म का गाना, मनहर उदास और आशा भोसले की आवाज है, पसंद आप सभी श्रोताओं की। बोकारो से कमला देवी, रीना देवी, रंजीत रवानी, अनिल रवानी, उषा देवी, रोही कुमारी, रवि कुमार, रितेश कुमार और रितिका कुमारी। मानगढ़ से आप हैं मिथिलेश पांडे, नीतू पांडे, अंशु कुमार पांडे, सुधांशु कुमार पांडे और उनका पूरा परिवार। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा।

अब बबीता बोथ, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयसा खान, हादिया खान, आसमा, सालिया, सोएब खान, मुस्तबा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई, चंदा रेडियो श्रोता संघ, चंदा चौक, मधुबनी बिहार से शोभिकांत झा, हेमलता, मनोज, लक्की, मोहित, परी, सरोज, स्तुति, नैतिक, सोनाक्षी, अर्चना, विवेक और मास्टर एसके सज्जन।

आइए सुनते हैं वंदनी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। पसंद आप सभी श्रोताओं की शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संतोष शर्मा, रचन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप परमा, रविकांत नामदेव, पवन यादव, सत्तू सोनी, अरुण कन्होजिया, संजय सोनी, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। न्यू एरिया दूसरी गली से मनश्विनी सिन्हा।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म वंदिनी में। इसी के साथ कार्यक्रम आपकी चाहत यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त माधवी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। समाचार संध्या एवं न्यूज एट 9 के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को, जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा

0: श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमापार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देशभर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। यशु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग स्यू टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्वकप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के

वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।

तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैयाराजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 वर्ष की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव गांव शहर शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिंथई किलंथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं।

इलैया राजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी। 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैया राजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैया राजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हसन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलियाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की टुकटुकी है, क्या जोर से बजी है।

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैया राजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने

चलिए राजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्रवीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलियाराजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलियाराजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलियाराजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलियाराजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलियाराजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलियाराजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलियाराजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलियाराजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलियाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैया राजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैया राजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैया राजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैया राजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिंफनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बना

0: संगीतकार इलिया राजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है बैराग।

आइए सुनते हैं हमसाया फिल्म का गाना जिसे गाया है आशा भोसले ने, गीत लिखा है सेवन रिजवी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

आइए सुनते हैं दादा फिल्म का गाना, जिसे लिखा है कुलवंत जानी ने, संगीत दिया उषा खन्ना ने, आवाज यशुदास की है।

बातों बातों में सुनते हैं इस फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है योगेश ने, संगीत राजेश रोशन का है।

आइए सुनते हैं आराधना फिल्म का गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत एस टी परमन का है।

ब्लैकमेल सुनते हैं इस फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले को। फिल्म का नाम था बम्बई का बाबू। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत एसटी बर्मन का था। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। आज की फिल्म है अभिमान। अभिमान फिल्म 1973 में बनी थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, असरानी और बिंदु। सभी गीतों को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था एसटी बर्मन ने। सुनते हैं इस फिल्म का पहला गाना किशोर कुमार की आवाज में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। आज की फिल्म है अभिमान। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अभिमान फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है एस टी बर्मन ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सुनते हैं अभिमान फिल्म का ये गाना, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ और आज भी उतना ही लोकप्रिय है।

लता मंगेशकर और मनहर की आवाज में सुनते हैं अभिमान फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत एस टी बर्मन का है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। आज की फिल्म थी अभिमान। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को यानी आईआरजीसी और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। यहीं संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।